जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है और जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे ही शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है। ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप को जो भी चित्त में धारण कर लेता है, उसकी अंतर और बाह्य दोनों दृष्टि खुल जाती है। अंतर्दृष्टि से वह कर्ता को देखता है और बाह्य दृष्टि से कार्य को देखकर करण और कारण में अपनी श्रद्धेय दृष्टि के कारण लोक और देव मार्ग पर चलकर श्रुति संबद्ध मार्ग को पा लेता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है चिंतन बिंदु।
1: जीवन में कभी भी आपको यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं अगर नहीं होता तो यह कार्य नहीं होता, मैं नहीं होता तो किसी का कोई कार्य नहीं होता, मैं नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं। प्रायः हम इस अहंकार में डूबे रहते हैं कि मैं नहीं रहता, परिवार में भी चाहे संबंधों में भी, मैं नहीं होता तो तुम्हारा पता चलता क्या हो जाता। हनुमान जी महाराज का एक चरित्र है, जब जानकी जी का पता लगा करके हनुमान जी आए और राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी से कहा कि तुमने मेरे जीवन का वह कार्य कर दिया, इतने दिनों तक मैं दुखी रहा, जानकी का कोई पता नहीं था और तुमने पता लगा करके मेरा कार्य सिद्ध कर दिया। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मेरे अंदर वह गुण भी नहीं, मेरे अंदर वह बल भी नहीं है। पहली बात तो यह है, किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए जीवन में। अगर अहंकार है तो पतन के लिए वह केवल मात्र अहंकार ही काफ़ी है। हनुमान जी महाराज से प्रभु ने कहा, क्यों, अगर तुम कारण नहीं हो तो जानकी जी का और कोई पता क्यों नहीं लगाया? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं भी पता नहीं लगाया, जिस समय सारी सेनाएं जा रही थीं तो आपने किसी को नहीं बुलाया और मुझे बुला करके अपनी मुद्रिका दी और मेरे सर पे हाथ फेरा कि जाओ, अगर जानकी तुम्हें मिले तो तुम इस मुद्रिका को दे देना। तो प्रभु उस मुद्रिका के सहारे मैं लंका पहुंच गया। तो अगर प्रभु मैं अपने बल पौरुष से पहुंचा होता तो मेरे मन में यह होता कि मैं नहीं होता तो क्या होता? प्रभु ने कहा, ठीक है, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम लंका को जला देना। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु धन्य है आप, लंका को मैंने जलाया। अगर लंका को मैंने जलाया होता, चाहे लंका को जलाने में मैंने अपने सामर्थ्य का प्रयोग किया होता तो मैं कहता कि मैं नहीं होता तो क्या होता, लेकिन लंका को आपने रावण से जलवा दिया, रावण की लंका रावण से जलवा दी और सहायक आप बन गए। मैं कोई ऐसी वस्तुओं को लेकर के नहीं गया था जिससे मैं लंका को जलाने का प्लान लेकर के गया था कि मैं लंका को जलाऊंगा। मुझे हंसी आई कि त्रिजटा ने स्वप्न देखा है कि लंका जलकर के खाक हो गई। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे लंका को जलाऊंगा, उर प्रेरक रघुनाथ प्रेरणा देने वाले आप हो, मैं लंका को कैसे जलाऊंगा, और इसका स्वप्न भी सत्य है। लेकिन धन्य है प्रभु, अगर लंका को मैंने अपनी व्यवस्था से जलाया होता तो मेरे मन में एक अहंकार उठता कि मैं नहीं होता तो क्या होता। तो उसके बाद राघवेंद्र सरकार ने कहा, अच्छा ठीक है, लंका भी तुम मेरे कारण जलवाए और यहाँ से मेरी मुद्रिका के सहारे पहुँच गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मैंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया है जिसे आप मुझे पद प्रतिष्ठा चाहे मेरा सम्मान करिए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम लंका पहुँच गए, लंका को जला दिया, तुम वापस आए, वापस आने में कौन सहायक मना? तो हनुमान जी महाराज ने कहा,

0: प्रभु, आपको मैंने पिता माना और परामबा जगदम्बा स्वरूपा जानकी जी को मैंने माँ माना। जब उनको लगा, मैं भी ये सोचता था कि लंका से अगर मैं वापस चला जाऊँगा अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, अपने वेग से, तो मेरे मन में यह प्रश्न रहता, मेरे मन में हमेशा यह भाव रहता कि मैं नहीं होता तो क्या होता। तो मैया ने अपना चूड़ामणि उतार के दे दिया, चूड़ामणि उतार तब ले हूँ हर समेत पवन सुत ले हूँ। उस चूड़ामणि को लेकर के मैं आपके पास चला आया, तो विचार करिए कि हर पग पग पर मुझे लगा कि आप मेरी सहायता कर रहे हो। तो जीवन में जब आपके साथ कुछ अच्छा चल रहा हो, अच्छा हो रहा हो, तो यह विचार करना चाहिए कि लोग आपके सहायक की भूमिका में हैं, इसलिए आपका अच्छा चल रहा है। इसलिए अच्छा नहीं चल रहा है कि आप अहम में यह करो कि मैं नहीं होता तो क्या होता। जिन हनुमान जी महाराज ने राघवेंद्र सरकार जी की एक बार कहने पर लंका पहुंचे, जानकी जी का पता लगाए, लंका को जलाए, इतना बड़ा बड़ा कार्य करने के बाद भी हनुमान जी कहते, प्रभु अगर आपने वह सब नहीं किया तो मेरा सामर्थ्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने किया होता तो मैं का भाव है, मैं का जो एक अहम है वह मेरे मन के अंदर रहता। इसलिए जीवन में कभी भी यह नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं होता तो क्या होता।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक रूपरेखा हम आपको बता दें।

हमारी आज की इसी सभा में 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का प्रोग्राम पूर्वा सुहानी और 8:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा हिट सुपर हिट्स। उर्दू प्रोग्राम 9:30 पर हमारे लखनऊ केंद्र से नशर किए जाएंगे और 9:50 पर सुगम संगीत के प्रोग्राम में आज के फनकार होंगे हरिहरन। आपकी फरमाइश पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 10:05 पर गाते गुनगुनाते और 11:05 पर लोकरंग कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे ब्रजराज दुबे। NCERT नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12:00 और 12:30 पर फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप सुनेंगे गीत सुहाने। 11:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गीतांजलि और सुगम संगीत का प्रोग्राम दोपहर 12:55 पर आप सुन सकते हैं। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे गुलाम अली की गाई चंद गजलें। नारी जगत दिन में 1:15 पर होगा और युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी शाम 5:05 पर। खेती किसानी कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे आज दोपहर 1:50 पर। इसमें आज डॉक्टर ज्ञान प्रकाश और कृष्णचंद की बातचीत होगी। विषय होगा पशुओं में बच्चेदानी बाहर आने की समस्या।

7 बजे देस हमार कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, इसमें राम कोशिर यादव की वार्ता आप सुनेंगे, भारतीय संस्कृति का विशेषता।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी बलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो, तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
2: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
1: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
2: हर गली हर मोहल्ला हो साफ। स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
1: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
2: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।
0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
4: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
5: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
4: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
5: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
4: गाने के बोल,
5: गीतकार
4: और संगीतकार
5: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
4: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
5: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
4: गाते
5: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर,
4: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
6: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स के साथ साथ FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः समाचार।

0: काश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथजी यात्रायां श्रद्धालूनां महत् सम्मर्दः दृश्यते, यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेषु एव 650,000-तोप्यधिकाः जनाः पवित्रगुहामन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्यदर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीयदिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटनदिवसे च 12,000-तोप्यधिकाः तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा श्वः नुवान पहलगाम इति आधार शिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्ड चक्रवादवायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु, हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तर प्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्ण रूपेण वृष्टिः संभाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेवी वोचेस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं

0: का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia today on a 3-day visit. Mr. Modi will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto and review the progress made in the partnership. His main engagements will be in Jakarta, but the Prime Minister will also visit a cultural and historic city, Yogyakarta. In Jakarta, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora. In the second leg of his tour, the Prime Minister will reach Melbourne on the 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th of July. He will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland. The session is being organized by the United Nations Trade and Development from today to Wednesday. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia, and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. Secretary Department of Consumer Affairs Nidhi Khare will chair the session. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the special investigation team probing the counting of donations received by the trust. We have a report.
2: The agenda of the meeting includes consideration of the resignation letter submitted by General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. Members will also be briefed on the interim report of the SIT regarding the counting of donations received through the trust's donation boxes. The meeting will further deliberate on arrangements related to the future management of the Ram Temple. Another key item on the agenda is the presentation and approval of the unaudited income

0: मिली जुली आवाजों में अभी आप देश गान सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य कर रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने योगी की पार्टी के जरिए बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील की, कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए नौकरी दे रही है सरकार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज, कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर होगी चर्चा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।
1: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि विगत समय में जिन विषयों को लेकर

0: पूरी दुनिया में अस्थिरता रही, हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।
1: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में विक अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा और विकास के एजेंडे पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज योगी की पाती के माध्यम से बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पर एक संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा है कि खेलने वाला ही खिलता है। सरकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान एवं सुरक्षित भविष्य के लिए सरकारी नौकरी प्रदान कर रही है। श्री योगी ने कहा कि आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, ब्लॉक में मिनी स्टेडियम तथा प्रत्येक जनपद में आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तैयार है। उन्होंने अभिभावकों से विशेष आग्रह किया है कि बच्चों की खेल प्रतिभाओं को कभी दबाएं नहीं। खेल केवल पदक नहीं दिलाता, अपितु नशे जैसी बुराइयों से बच्चों और युवाओं को दूर रखने के लिए एक सबसे सशक्त ढाल बनता है। युवाओं के लिए खेल आज कैरियर में सपनों को साकार करने का भी माध्यम है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News _ GKP पर भी उपलब्ध है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जीराम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने सदस्यों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: 28 जून को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में SIT की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। विज्ञप्ति के मुताबिक अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य मामले पर भी चर्चा हो सकती है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में विवेचक ने कल जिला कारागार में 8 आरोपियों में से 5 से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा विशेष सुरक्षा जागरूकता और

0: समिति परिसरों में बैंकों, इफको, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: प्रदेश भर में चल रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत कल सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में वहां के सांसद जगदम्बिका पाल ने भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए वृक्षारोपण के लक्ष्य को जिले में जुलाई माह में पूरा कर लिया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा सिद्धार्थनगर के लिए 45 लाख पौधों को रोपित करने का लक्ष्य है, जिसमें अभी तक 6.25 लाख आज पहली जुलाई से हो चुका है और 12 जुलाई को पूरे प्रदेश के स्तर पे और सिद्धार्थनगर में सभी मंडलों में बड़े व्यापक रूप से वृक्षारोपण अभियान होगा।
1: मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य कर रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने योगी की पार्टी के जरिए बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील की, कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए नौकरी दे रही है सरकार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि जारी की। और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज, कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर होगी चर्चा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
5: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।

0: परदेस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार,
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते गुनगुनाते
3: सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
5: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
4: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
5: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।

0: अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म सरफरोश में। गीत समीर का था और संगीत जतिन ललित का।
1: कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: फिल्म संगीत का प्रोग्राम पूर्वा सुहानी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

जानम समझा करो। इस फिल्म में अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू को। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था और संगीत दिया था अनु मलिक ने। आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम पूर्वा सुहानी।

0: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर

0: पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सीमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और मोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष

0: इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
2: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में

0: सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। इंडिया टू चेयर अंगटाड्स 9th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन जिनेवा। India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
3: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a 2-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy security and cultural collaboration. The highlight of the Jakarta's program will be Prime Minister Modi's address to the Indian diaspora, which is drawing excitement across the country. Communities from Bali, Medan, Semarang, Surabaya and Jakarta are preparing a grand welcome complete with cultural performances. Thousands of Indian nationals and people of Indian origin are expected to gather in the venue, describing the visit as a matter of pride and an opportunity to strengthen their connection with the motherland. Shondipan Dashgupta, Jakarta, Indonesia.
2: In the second leg of his tour, Mr. Modi will reach Melbourne on 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th July. He will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group

0: keep 69% urban women out of labour force in India. And finally, the Pioneer mentions the passing away of the legendary Pandavani exponent Tijan Bhai, whose commanding voice became the global face of Chhattisgarh's folk tradition under the headline, "A voice that brought beam alive falls silent. Her legend lives forever." And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's ninth session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host two-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust convenes meeting of its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after five-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में यूएनसीटीएडी के सारफीन के तहफ्फुज़ से मुतालिक माहिरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स ख्वातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अलाक्वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आज अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। तीन मुल्कों के इस दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज शाम 2 दिन के लिए इंडोनेशिया पहुंचेंगे। जनाब मोदी का इंडोनेशिया का ये चौथा दौरा है और मई 2018 में जब से भारत और इंडोनेशिया के ताल्लुकात जामे दिफाई शराकतदारी की सतह पर लाए गए हैं, तब से ये उनका पहला दोतरफा दौरा है। अपने दौरे में वजीर आजम कल इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे और शराकतदारी में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। हमारे नामानिकार की एक रिपोर्ट।
3: उम्मीद है कि जनाब प्रावो सुबियांतो और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जामे दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने पर बातचीत करेंगे, जिसमें दिफा से मुतालिक ताउन, तजारत और सरमायाकारी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, नीज सकाफती इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जकार्ता के प्रोग्राम की खास बात वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भारतीय बिरादरी से खिताब होगा, जिसमें मुल्क के बाली, मैदान, सीमांग और जकार्ता के लोग शामिल होंगे। ये लोग शानदार खैर मकदम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके दौरान सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इस मौके पर हजारों भारतीय शहरी और भारत नजाद लोग यकजा होंगे और अपने मादर वतन से अपने राबते को मुस्तहकम करने के इस मौके पर फख्र का इजहार करेंगे। 8 जुलाई को जनाब मोदी तारीखी परम्बरन मंदिर के दर्शन के लिए योग्य कीर्ता जाएंगे। भारत यूनेस्को के आलमी विरासती मकाम की बहाली की कोशिशें करता रहा है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी रिश्तों की अहमियत जाहिर होती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम इस माह की 8 तारीख को 3 रोजा दौरे पर मेलबर्न पहुंचेंगे। यहां वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरी सालाना समिट में शिरकत करेंगे। अपने तीन मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस माह की 10 और 11 तारीख को न्यूजीलैंड जाएंगे। वजीर आजम मोदी न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे।

0: पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का यह पहला दौरा होगा। सारिफिन उमूर खुराक और तकसीम आम्मा की वजारत ने कहा है कि इस इजलास में रुकन ममालिक, बैन अलाक्वामी तंजीमें, सारिफिन तहफुजाती हुकाम, तालीमी इदारे और दीगर मुतालिका फरीकैन यकजा होंगे और सारिफिन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलात पर बातचीत करेंगे। माहरीन का बैन हुकूमती ग्रुप सारिफिन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी पर तआवुन और मुजाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफॉर्म है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सारिफिन उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खरे इस इजलास की सदर नशी होंगी। वो सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोज़ा बातचीत की सदारत करेंगी। इजलास की अहम बातों में सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के उसूलों का आगाज शामिल है, जिन्हें अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दिसंबर 2025 में मंजूर किया गया था। भारत आला सतह के मुजाकरात में भी शिरकत करेगा, जिसका उन्वान है उसूलों की अहमियत क्यों है। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ब्रिक्स मुल्कों की मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के सरबराहान का इजलास आज आसाम के शहर गुवाहाटी में शुरू होगा। ये 2 रोज़ा इजलास वजारत दाखिला के तहत मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक ब्यूरो NCB के जेर एहतमाम मुनक़द किया जा रहा है। इस इजलास में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इंसदाद मुनशियात एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर हुक्काम शिरकत करेंगे, ताकि मुनशियात की स्मगलिंग और नशा आवर अशिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ तआवुन को मजीद मजबूत बनाया जा सके। एक रिपोर्ट।
2: गुवाहाटी में होने वाले इस इजलास में सिंथेटिक्स मुनशियात के गैर कानूनी इस्तेमाल और स्मगलिंग, इंटेलिजेंस मालूम के तबादले, ऑपरेशनल राबताकारी, सलाहियत साजी और इदारा जाती ताउन को फरोग देने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। मंदूबीन में नई नफसियाती असरात रखने वाले मुनशियात, जिनमें डार्क नेट के जरिए मुनशियात की स्मगलिंग, क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक माली लेन देन और इसके गलत इस्तेमाल जैसे उभरते हुए चैलेंजेस पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में भारत मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कोशिशों को भी उजागर करेगा। इजलास के दौरान रुकन ममालिक मुनशियात से मुतालिक बदलते हुए खतरा से निपटने के लिए मुश्तरक हिकमत अमली पर गौर करेंगे और बैन अलाक़वामी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के इकदाम पर तबादले ख्याल करेंगे। राकेश डोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: भारत आसाम के शहर गुवाहाटी में आज नशीली अशिया की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के ब्रिक्स सरबराहान की 2 रोज़ा मीटिंग की मेजबानी करेगा। वजारत दाखिला ने कहा है कि मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इन एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे, जिसका मकसद नशीली अशिया पर काबू पाने वाली एजेंसियों के माबैन इदारा जाती तसलसल को मुस्तहकम बनाना और कामकाज के सिलसिले में किए जाने वाले तआवुन में मजीद गहराई लाना है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने अरकान की मीटिंग बुलाई, जिसका मकसद बहुत से अहम इंतजामी और माली मामलात पर बातचीत करना है। इन मामलात में खसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तहकीकात भी शामिल है। ये तहकीकात ट्रस्ट को मौसूला अतियात की गिनती के बारे में की जा रही है। इससे पहले यह मीटिंग मनीराम छावनी में दोपहर तकरीबन 3 बजे होना थी, लेकिन मीटिंग की जगह बदल दी गई है और अब यह मीटिंग राम मंदिर के अहाते में मुनक़द होगी। तफसील हमारे नमानिकार से।
1: 28 जून 2026 को जारी किए गए एक सरकारी नोटिस के मुताबिक मीटिंग के एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से दिए गए इस्तीफों पर गौर करना भी शामिल है। अरकान को ट्रस्ट के अतिया बक्सों के जरिए मौसूल अतियात की गिनती के बारे में SIT की उबूरी रिपोर्ट के बारे में भी बताया जाएगा। इस मीटिंग में राम मंदिर के मुस्तकबिल के मैनेजमेंट से मुतालिक इंतजाम पर भी बातचीत की जाएगी। एजेंडे में एक अहम मामला उस आमदनी को पेश करना भी है, जिसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं किया गया है, और अखराजात के बारे में बयान, बैलेंस शीट और माली साल 2025-26 से मुतालिक दीगर माली दस्तावेजात की मंजूरी भी शामिल है। नोटिस में चेयरमैन की इजाजत से दीगर मामला पर भी बातचीत की जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर वजारत सकाफत मगरबी बंगाल हुकूमत के तआवुन से कोलकाता में एक प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। ये प्रोग्राम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की 2 साल तक जारी रहने वाली सरकारी तकरीबात का हिस्सा है, जिसका ऐलान पिछले साल वजारत सकाफत ने किया था। प्रोग्राम की सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे, जबकि मरकजी वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत

0: और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुमेंदु अधिकारी भी इसमें शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामानिकार से।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दोपहर कोलकाता पहुंचेंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब शाह सबसे पहले न्यू टाउन के इको पार्क जाएंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट बुलंद मुजस्मे की संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर में जनाब शाह भवानीपुर में वाक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आबाई रिहायशगाह पर मुनदा तकरीब में उनके मुजस्मे पर गुलाह अकीदत पेश करेंगे। शाम के वक्त मरकजी वजीर दाखिला बीसवा बांग्ला मेला प्रांगण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। जनाब मोदी ने उन्हें जुरत हुब्बुल वतनी और बेलौस खिदमत की लाजवाल मिसाल करार दिया। वजीर आजम ने अपने एक मजमून में लिखा है कि मुल्क की तकसीम के दौरान डॉक्टर मुखर्जी ने मगरबी बंगाल को भारत का अटूट हिस्सा बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम किया और बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी जम्मू कश्मीर के मसले के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि 2019 में आईन की दफा 370 और 35 ए की मनसूखी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को पेश किया जाने वाला सबसे मौजूं खिराज अकीदत है। मुंबई और महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने मामूल की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां बड़ी नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जबकि मुंबई और नवी मुंबई में कई इमारतों के गिर जाने के वाकये में कई अफराद हलाक हो गए। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय महकमे मौसमियात ने आज मुंबई, थाने, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने रायगढ़ जिले के लिए इंतहाई शदीद बारिश के खदशे के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर साहिली जिलों और पुणे के तमाम सरकारी, म्यूनिसिपल और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को आज बंद रखने का फैसला किया गया है। संगीता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ब्राजील के तजर्बेकार फुटबॉलर निमार जूनियर ने बैन अलाक्वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब पांच बार की आलमी चैंपियन ब्राजील की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 2-1 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 34 साल निमार ने ब्राजील की जानिब से सबसे ज्यादा बैन अलाक्वामी गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर का इख्तिताम किया। ब्राजील की छठी मरतबा वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद इस वक्त खत्म हो गई जब नॉर्वे के अर्लिंग आलान ने मैच के आखिरी लम्हात में 2 गोल किए। निमार ने इजाफी वक्त में पेनल्टी के जरिए 1 गोल जरूर किया, लेकिन वो शिकस्त का फर्क कम करने के सिवा कुछ न कर सके। निमार के रिटायरमेंट के साथ ब्राजील की फुटबॉल के एक शानदार बैन अलाक्वामी दौर का इख्तिताम हो गया। ब्राजील के लिए यह मुसलसल 7वां मौका था जब उसे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में किसी यूरोपीय टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को बाइख्तियार बनाए जाने के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा साइबर सिक्योरिटी के माहिर गुलशन राय के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 011-2342-1050 और 011-2331-4444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289-094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #AskEIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मुल्क में एलएनजी सप्लाई में बेहतरी और हुकूमत का इमरजेंसी गैस रेगुलेशन वापस लेने के फैसले को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आने के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर मगरबी एशिया के दौरे पर तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी और सिक्योरिटी समेत कई अहम उमूर पर करेंगे तबादले ख्याल। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है जिनेवा में मस्नूई ज़हानत एआई से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के आलमी मुकालमे में भारतीय वफद की क़यादत वज़ीर-ए-ममलकत बराए खारजा कीर्ति वर्धन करेंगे। हुकूमत

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत का प्रोग्राम हिट्स सुपर हिट्स।

0: फिल्म प्रेम पर्वत का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था जानिसार अख्तर ने और इसे संगीत दिया था जयदेव ने।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

बैराग फिल्म में अभी आप आशा भोसले और किशोर कुमार को सुन रहे थे। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने।

निकाह फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़, गीत और संगीत गुलाम अली का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का प्रोग्राम हिट्स सुपर हिट्स अब यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। 9:15 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल।
1: मीडियम वेव की मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और चित्रकूट जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और चित्रकूट जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का।
1: श्रावण मास की महाशिवरात्रि पर 8 से 11 अगस्त तक लगने वाले ऐतिहासिक श्री परशुरामेश्वर मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय ने अधिकारियों और मेला समिति के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कावड़ मार्ग पर सड़क, पेयजल, प्रकाश, सफाई, चिकित्सा सुरक्षा और मोबाइल शौचालय जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कावड़ मार्ग की झाड़ियों की कटाई, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग और विद्युत पोलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि सूचना विभाग की ओर से कावड़ यात्रा ऐप तैयार किया जाएगा, जिसमें QR कोड के माध्यम से श्रद्धालुओं को मेला, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। मेला परिसर और कावड़ मार्ग पर CCTV कैमरे, अग्निशमन उपकरण, एम्बुलेंस, अस्थायी अस्पताल, निःशुल्क ई रिक्शा और व्हील चेयर की भी व्यवस्था रहेगी। डीएम ने अधिकारियों से श्रावण मास की इस कावड़ यात्रा और मेले की जीरो वेस्ट महोत्सव के रूप में बनाने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया। दानवीर भामाशाम की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी कल्याण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएम अस्मिता लाल ने की। इस अवसर पर ADM एवं संयुक्त आयुक्त राज्यकर सहित राज्यकर विभाग के अधिकारी, व्यापारी, उद्यमी और अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जनपद में सर्वाधिक जमा कर करने वाले 5 प्रमुख फर्मों को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। डीएम ने सम्मानित व्यापारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईमानदारी से कर अदा करने वाले व्यापारी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान राज्य कर विभाग के अधिकारियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया। लखनऊ में हुए कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। जनपद भर में कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी और अन्य सार्वजनिक संस्थानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में किए गए निरीक्षण में कई संस्थान बिना अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC के संचालित पाए गए। कई स्थानों पर आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण और फायर ब्रिगेड वाहनों के पहुँच मार्ग जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं भी नहीं मिली। प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ौद शहर की खतरीगढ़ी समेत जनपद भर में 65 से ज्यादा स्थानों पर फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी को सील कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों से अग्निशमन नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। तरूपुर गांव में उत्तर प्रदेश स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पिछड़ी जातियों की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ साथ गांव में चल रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों ने आयोग को बताया कि गांव में पिछड़ी जाति के कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अभी भी अनेक लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।

0: आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों की वास्तविक जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन किया जा रहा है, ताकि स्थानीय निकायों में उनके समुचित प्रतिनिधित्व और आरक्षण के संबंध में उचित संस्तुतियां शासन को भेजी जा सके। बागपत बड़ौत खेगड़ा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उसके अधिकार क्षेत्र में किसी भी भवन या कॉलोनी का विकास शुरू करने से पहले मानचित्र लेआउट और अन्य आवश्यक अनुमतियां लेना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति किए गए निर्माण के खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने आम नागरिकों और भूखंड खरीदने के इच्छुक लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधता का सत्यापन करे। सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्री से सादरा से खेगड़ा तक मेट्रो ट्रेन का विस्तार कराने की मांग की थी। शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने उनकी मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सादरा से खेगड़ा तक मेट्रो ट्रेन के विस्तार का प्रस्ताव यूपी सरकार को भेज दिया है। इसकी जानकारी शहरी विकास राज्य मंत्री ने सांसद को पत्र भेज कर दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के साकार होने पर बागपत एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर, सुरक्षित, तेज और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी।
1: बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
2: भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में जनपद चित्रकूट में बीबीजी रामजी योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं जन सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को योजना के उद्देश्यों, लाभों और सहभागिता आधारित विकास कार्यों की जानकारी प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना के सुदृढ़ी करण हेतु विभिन्न विकास कार्य गतिमान है। दिनांक 1 जुलाई 2026 तक जनपद की 35 ग्राम पंचायतों में मास्टर रोल निर्गत किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 11 जल संचयन कार्य, तालाब, चेक डैम तथा 24 अन्य विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने जानकारी दी कि जनपद चित्रकूट में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार हेतु 11.77 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन इको टूरिज्म पर आधारित श्री राम वाटिका टूरिज्म इको पार्क का काम चल रहा है। परियोजना के अंतर्गत इको लॉज, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, नेचर ट्रेल, चिल्ड्रन प्ले एरिया, एमपी थिएटर, एडवेंचर गेम्स, सोलर लाइटिंग, पार्किंग, जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यह परियोजना जनपद चित्रकूट को एक प्रमुख इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित करने के साथ स्थानीय रोजगार, पर्यटन गतिविधियों एवं क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगी।
3: गणेश पार्क के पास टूरिज्म विभाग के माध्यम से श्री राम वाटिका टूरिज्म इको पार्क जो है वो विकसित किया जा रहा है। इसकी धनराशि लगभग 12 करोड़ की धनराशि से ये प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। और इस पार्क का जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, वो है कि वहाँ पे बैठने के लिए एक अच्छा एम्फी थिएटर है लगभग 200 की क्षमता का, साथ साथ बहुत अच्छे श्री राम और रामायण से जुड़े जो हमारे मिरर्स हैं उसकी कहानी पूरी उसमें उकेरी जाएगी। वहाँ पे सभी लोगों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था, एक अच्छा हॉर्टिकल्चर का जो पार्क है वो विकसित और पूरे पाथवे के साथ लगभग 70% कार्य इसका पूरा हो चुका है। अगले 3 से 4 महीनों में इसका लोकार्पण जो है वो कर लिया जाएगा।
2: तहसील मानिकपुर क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1984 में निर्मित बरदहा बांध के पुनरुद्धार कार्य कराया जा रहा है। साथ ही 11.40 किलोमीटर लंबी बरदहा मुख्य नहर एवं उससे संबंधित 14 महत्वपूर्ण संरचनाओं के पुनरुद्धार का कार्य भी प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत आगामी मानसून में नहर संचालन के माध्यम से कृषकों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा छरिया बंदी, बराह माफी टैंक एवं जरिया टैंक को भी जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
3: लगभग 12 से 14 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत किया गया है और इससे सभी किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा और जितनी फसल वर्तमान में जो लेते थे उससे 2 या 3 गुना उससे ज्यादा फसल जो है वो वहाँ पर ले पाएंगे। बरदा डैम को चौड़ा भी किया जा रहा है, वहाँ पे सारे जो होल्स हैं उनको भी भरा गया।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से प्रदेश में लागू नई टेक होम राशन व्यवस्था के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में आंगनवाड़ी लाभार्थी हेतु नई पोषाहार रेसिपी के अनुसार वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में जनपद की 4 विकास परियोजनाओं के अंतर्गत चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती एवं धात्री माताओं, शिशुओं तथा बच्चों की पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित श्रेणियों में पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। शीघ्र ही जनपद के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। चित्रकूट जिले में मानसून सत्र के मद्देनजर बालू और मोरम के खनन पर 3 माह का प्रतिबंध लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व चंद्रशेखर ने जनपद के संचालित सभी बालू एवं मोरम खनन पट्टा धारकों तथा अनुज्ञा धारकों को निर्देश जारी करते हुए 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक नदी तल

0: से उपखनिजों के खनन और परिवहन पर पूर्ण रोक लगाने को कहा है। यह प्रतिबंध भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन और सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 के तहत लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, जैव विविधता एवं पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखना है। चित्रकूट जिले के पशुपालकों के लिए मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने पर 11.80 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान 2 चरणों में दिया जाएगा। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि 10 गांवों की डेयरी इकाई की कुल अनुमानित लागत 23.60 लाख रुपए है। इसमें लाभार्थी को 15% अंशदान स्वयं करना होगा, जबकि 35% राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। योजना के तहत 50% लाभ महिला पशुपालकों और दूध उत्पादकों को दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक नंद बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अथवा उप दुग्धशाला विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार,
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते
1: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: सुगम संगीत के प्रोग्राम में आज के फनकार हैं, क्षमा कीजिएगा। आइए सुनते हैं देशगान।

0: समवेत स्वर में अभी आप सुन रहे थे देशगान। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। 9:30 होने को हैं। अब सुनिए हमारे लखनऊ केंद्र से उर्दू प्रोग्राम।
1: कर 30 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। आज सुनिए आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश।

0: आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया एक मारूफ कहावत है जो हमें माली एतदाल, किफायतशियारी और जिम्मेदाराना तर्ज जिंदगी का दर्स देती है। दोस्तों, इसका बुनियादी मफहूम यह है कि इंसान को अपनी आमदनी के मुताबिक ही खर्च करना चाहिए ताकि माशी तवाजुन बरकरार रहे और मुस्तकबिल के लिए भी कुछ बचत मुमकिन हो सके। सामीन, मौजूदा दौर में बढ़ती हुई महंगाई, खरीदो फरोख्त के बढ़ते हुए रुझानात और रोजमर्रा जरूरियात में इजाफे ने आम आदमी के लिए घरेलू बजट को मुतवाजिन रखना एक बड़ा चैलेंज बना दिया है। ऐसे हालात में आमदनी और खर्च के दरमियान तवाजुन कायम रखना न सिर्फ एक माशी जरूरत है बल्कि एक समाजी और अखलाकी जिम्मेदारी भी है। बेजा अखराजात, फजूल खर्ची और गैर जरूरी कर्ज न सिर्फ माली मुश्किलात पैदा करते हैं बल्कि घरेलू सुकून और जहनी इत्मीनान को भी मुतासिर करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात में फर्क को समझें, मंसूबा बंदी के साथ खर्च करें, बचत की आदत अपनाएं और अपनी माली इस्तेताअत के मुताबिक ही जिंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश करें। यही तर्ज अमल किसी भी फर्द, खानदान और माशरे तीनों के लिए इस्तेहकाम और खुशहाली का बाइस बन सकता है। लिहाजा आज के इस बेहद खूबसूरत प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आमदनी कम होते हुए कैसे खर्च पर काबू पाया जा सकता है। इन्हीं सब बातों के पेश नज़र आज हमने अहतमाम किया है एक गुफ्तगू का, मौजू है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इस उन्वान पर बातचीत करने के लिए आज की उर्दू बज में हमारे साथ तशरीफ फरमा है सी ए मोहतरमा अरूबा मुमताज साहिबा और नाचीज सैयद मोहम्मद उमैर। हम सबसे पहले अपने मेहमान खुसूसी का आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं।
1: शुक्रिया।
0: और अब बगैर किसी तमीद व ताखिर मोहतरमा अरूबा मुमताज साहिबा से सवाल है। अरूबा साहिबा, चूंकि आप पिछले कई सालों से सी ए के तौर पर बैंकिंग खिदमत अंजाम दे रही हैं, तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जो एक मारूफ कहावत है, जैसे कि आप खुद जानती हैं, मौजूदा माशी हालात में इस कहावत की अहमियत व इफादियत को आप किस तरह देखती हैं, हमारे सामीन के लिए इसकी वजाहत फरमाएं।
1: जी बिल्कुल, ये कहावत आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले थी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी आमदनी के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। अगर खर्च आमदनी से ज्यादा हो जाए तो धीरे धीरे पैसों की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, आसानी से मिलने वाले लोन्स और हर तरह के ऑफर्स की वजह से कई बार लोग अपनी जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देते हैं।
0: जी।
1: फिजूल खर्च से बचने के लिए हमें बचत करना बहुत जरूरी है।
0: तो बहुत उम्दा आप कह रही हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये मुहावरा हमें ये सबक देता है कि अखराजात हमेशा आमदनी के मुताबिक होने चाहिए। मौजूदा महंगाई के दौर में ये कहावत पहले से कहीं ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि माली नज्म व ज़ब्त ही माशी इस्तेहकाम की बुनियाद है। बहुत ही उम्दा बात आपने कही। एक और सवाल।

0: यहाँ पर करेंगे। अभी आपने बढ़ती हुई महंगाई का तذکرہ किया, एक सवाल महंगाई के ताल्लुक से करेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई और महदूद आमदनी के दौर में घरेलू बजट को मुतवाजिन रखने के लिए किन बुनियादी उसूलों को अपनाना जरूरी है, इस पर आप क्या कहती हैं?
1: घर का बजट बनाना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है।
0: जी,
1: बजट से हमें ये पता चलता है कि हमारी कमाई कितनी है और खर्च कितना हो रहा है। सबसे पहले जरूरी खर्च जैसे राशन, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, बिजली, पानी, इन सबको अहमियत देनी चाहिए। और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसमें से हमें बचत करनी चाहिए। बजट बनाने से घर खर्च कंट्रोल में रहते हैं और अचानक कोई ज़रूरत या मुश्किल आ जाए तो उसका सामना करना आसान हो जाता है।
0: तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि घरेलू बजट मुतवाजिन रखने के लिए जरूरी है कि जरूरियात को तरजीह दी जाए, गैर जरूरी अखराजात से बचा जाए, हर माह बजट बनाया जाए जैसे आपने कहा, और आमदनी का कुछ हिस्सा बजट के लिए मुख्तस किया जाए ताकि आने वाले ऐसे वक्तों के लिए जिस वक्त में इंसान परेशान होता है उससे मदद हासिल कर सके। तो बहुत ही उम्दा बात आप कर रही हैं। अभी आपने खर्च की बात की, तो खर्च में एक खर्च जरूरी होता है और एक खर्च जो होता है वो फजूलियात में जाता है, यानी कि गैर जरूरी चीजों में भी हम खर्च करने लगते हैं। तो एक सवाल यहाँ पर ये करेंगे कि आज के दौर में फजूल खर्ची और गैर जरूरी अखराजात के रुझानात में इजाफा क्यों हो रहा है, एक सवाल तो ये, और इसके मुआशरे और खानदान पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पर आपकी क्या राय?
1: आजकल सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और हर वक्त मिलने वाले ऑफर्स की वजह से लोग कई बार बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं।
0: जी,
1: कई बार हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है पर तब भी हम उसे खरीद लेते हैं। इससे बचने के लिए हमें ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ खरीदने से पहले एक लिस्ट बनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसी के हिसाब से हम सामान खरीदें। मेरी राय में अगर हम खरीदारी से पहले सोच लें कि क्या ये वाकई जरूरी है तो फिजूल खर्च से बचा जा सकता है।
0: तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि दिखावे की जिंदगी और आसान कर्ज की सहूलियत ने फिजूल खर्ची में इजाफा किया है। ये मुसल्लम हकीकत है कि हम दिखावे के लिए कुछ ना कुछ खरीदने लगते हैं, और इसी तरीके से इसके नतीजे क्या होते हैं वो ये है कि कर्ज, जहनी दबाव और घरेलू माली मुश्किलात पैदा होती चली जाती हैं, जिससे निकलना बसा औकात बहुत मुश्किल होता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत उम्दा बातें आप कर रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी बात को रख रही हैं। एक सवाल यहाँ पर करेंगे, बजट की बात आप कर रही थी अभी, तो बजट की आदत फर्द और खानदान की माशी मजबूती में किस हद तक मामिन साबित होता है, इस आदत को फरोग देने के लिए क्या अमली इकदाम किए जा सकते हैं, इसकी वजाहत फरमाएं।
1: बचत की आदत हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है।
0: जी,
1: ये सिर्फ पैसा बचाना नहीं बल्कि अपने आने वाले कल को महफूज बनाना है। अगर हम हर महीने अपनी आमदनी का थोड़ा सा हिस्सा बचत के लिए अलग रखते हैं तो जरूरत आने के वक्त वही पैसा हमारे काम आता है। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, इलाज हो या अचानक कोई खर्च आ जाए तो बचत हमेशा मदद करती है। इसलिए हर इंसान को अपनी आमदनी के मुताबिक बचत जरूर करनी चाहिए।
0: तो बहुत अच्छा आपने कहा कि बचत मुआशी तहफ्फुज़ फराहम करती है, कि इंसान को बुरे वक्त के लिए ये बचत ही निकाल कर बाहर ले जाती है और हंगामी हालात में सहारा बनती है। इसके लिए बाकायदा बजट बनाना, गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करना, बचना और माली मंसूबा बंदी को अपनी जिंदगी का मामूल बनाना बहुत जरूरी है और वक्त की अहम तरीन जरूरत में शामिल है। तो ये बात आपने रखी, बहुत उम्दा रखी। यहाँ पर अभी आपने सोशल मीडिया का भी तस्करा किया था कि वहां से ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, तो एक सवाल ये करेंगे कि सोशल मीडिया और इश्तेहारात और लाइन खरीदारी ने लोगों के खर्च करने के अंदाज को किस हद तक मुतासिर किया है, इसके मुस्बत और मनफी पहलू क्या क्या हो सकते हैं, इस पर इजहार ख्याल फरमाएं।
1: आज के दौर में सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। घर बैठे ही हमें हर तरीके का सामान और उसकी जानकारी मिल जाती है, लेकिन इसके साथ एक बात को ध्यान रखना भी जरूरी है। कई बार लोग एडवर्टीजमेंट और ऑफर देखकर बिना जरूरत के शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन हर देखने वाली चीज जरूरी नहीं होती है। इसलिए हमें जरूरत और बजट को ध्यान में रख के खरीदारी करनी चाहिए। मेरी राय में अगर हम सोच समझ कर फैसला करें तो सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग का सही तरीके से फायदा भी उठाया जा सकता है।
0: तो बहुत उम्दा बात आपने कही कि सोशल मीडिया और

0: ऑनलाइन खरीदारी ने खरीदारी को आसान तो बनाया है, इससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन गैर जरूरी अखराजात भी बढ़ा दिए हैं। इसलिए हर खरीदारी जरूरत और बजट को सामने रखकर ही करनी चाहिए, ये एक समझदारी हो सकती है। बहुत उम्दा बात आपने कही। यहाँ पर एक सवाल ये करेंगे, सरकार हमें बहुत सारी स्कीमें देती है और आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत से लोग नावाकिफ होते हैं, उन स्कीमों के बारे में जानते नहीं है। तो एक सवाल ये है कि बहुत से लोग सरकारी स्कीमों से नावाकिफ होते हैं या रह जाते हैं या उनसे फायदा नहीं उठा पाते, इसकी बुनियादी वजूहत क्या हो सकती है और अवामुन्नास तक इन स्कीमों को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, इस पर आप क्या कहती हैं?
1: मेरे ख्याल से सिर्फ किसी स्कीम के बारे में सुन लेना काफी नहीं है,
0: जी
1: उसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता वो स्कीम उनके लिए है भी कि नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, कब तक आवेदन करना है, इस वजह से वो स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते। कई बार ऐसा होता है लोग सही जानकारी लेने के बजाय दूसरों की बातों में आ जाते हैं। एक सीए होने के नाते मेरी सलाह यही होगी कि किसी भी स्कीम का फायदा उठाने से पहले उससे संबंधित उसके विभाग से जानकारी लीजिए।
0: जी
1: अगर जरूरत हो तो किसी प्रोफेशनल से भी मशवरा जरूर लें, इससे गलती होने की संभावना कम हो जाती है और स्कीम का पूरा फायदा मिल सकता है।
0: बहुत उम्दा बात आपने कही कि मालूमात की कमी, पेचीदा तरीके कार और आगाही की कमी बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से अवामुन्नास तक सरकारी स्कीमों की मालूमात नहीं पहुंच पाती। हुकूमत, बैंक और समाजी इदारे अवामुन्नास तक या अवामुन्नास में बेदारी पैदा करने के लिए कोई ना कोई स्कीम मजीद चलाएं या बेदारी पैदा करने के लिए कुछ इकदाम जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी स्कीमों से फायदा उठा सकें। बहुत उम्दा बात आपने कही। यहाँ पर सरकारी स्कीम की जब बात आई तो आजकल आप देखते हैं म्यूचुअल फंड के ताल्लुक से बहुत एड भी आ रहे हैं और लोग इसके ताल्लुक से बात भी कर रहे हैं। तो एक सवाल हम आपसे म्यूचुअल फंड के ताल्लुक से करेंगे कि म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी के क्या फायदे हैं और क्या खतरात हैं, रिस्क हैं? सरमायाकारी से पहले किन बातों का ख्याल रखना एक आम इंसान के लिए जरूरी है, इस पर आप क्या कहती हैं?
1: म्यूचुअल फंड उन लोग के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है जो अपने पैसे बढ़ाना चाहते हैं,
0: जी
1: लेकिन खुद शेयर मार्केट में रोज चीजें नहीं देख सकते हैं। इसमें एक्सपर्ट्स यानी प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका पैसा अलग अलग जगहों पे अलग अलग असेट्स में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में सबसे पहला फायदा आपका ये होता है कि आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में आपकी SIP होती है, आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने की अच्छी संभावना होती है। और इन्वेस्टमेंट से पहले तीन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अपना फाइनेंशियल गोल क्लियर कर लें कि आप म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगा रहे हैं तो वो किस चीज के लिए लगा रहे हैं। आपको बिजनेस करना है, आपको कुछ खरीदना है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, और सिर्फ हाई रिटर्न देखकर इन्वेस्ट ना करें।
0: तो बहुत उम्दा बात कही कि म्यूचुअल फंड तवील मुद्दत में बेहतर मुनाफे का जरिया बन सकता है जैसा अभी आपने कहा, लेकिन इसमें मार्केट का खतरा लगा रहता है, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। सरमायाकारी से पहले अपने माली मकसद, खतरा बर्दाश्त करने की सलाहियत और माहिरीन के मशवरे को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है, तभी आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाएं। बहुत उम्दा बात आपने कही। अभी म्यूचुअल फंड के साथ साथ आपने, क्योंकि आप सीए भी हैं तो आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड का बड़ा दौर है, हर शख्स जो है क्रेडिट कार्ड से उधार पैसे ले रहा है, कर्ज ले रहा है। एक सवाल ये करेंगे कि कर्ज लेकर जरूरियात या ख्वाहिशात पूरी करना किस हद तक ये सही है और बाद में इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर आप क्या कहती हैं?
1: मेरे हिसाब से कर्ज तभी लेना चाहिए जब उसकी वाकई में आपको जरूरत हो और उसका कोई मकसद हो,
0: जी
1: जैसे तालीम, घर खरीदना या कारोबार शुरू करना या बढ़ाना। ऐसे कर्ज को जिम्मेदाराना फैसला माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ दिखावा, महंगी चीजें खरीदना या गैर जरूरी ख्वाहिशें को पूरी करने के लिए अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, इससे आगे चलकर बोझ बढ़ सकता है। कर्ज लेने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि उसकी किश्त यानी EMI हम अपनी आमदनी में से आसानी से दे सकते हैं कि नहीं। तो कर्ज लेने से पहले आप ये जरूर देखें कि आप किस मकसद के लिए उसे ले रहे हैं।
0: तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि जरूरियात के तहत कर्ज लिया जा सकता है और लेना मुनासिब हो सकता है, लेकिन ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कर्ज लेना दानिशमंदी नहीं है, अकलमंदी नहीं है। इससे कर्ज का बोझ, सूद की अदायगी और माली मुश्किलात

0: में मजीद इजाफा हो सकता है, जैसा कि आपने अभी कहा, तो इससे बचना चाहिए। एक और सवाल यहाँ पर करेंगे, माली शमूलियत के तहत बैंक खाते, डिजिटल अदायगी, बीमा और पेंशन जैसी सहूलियात आम आदमी की माशी सलामती यानी जिंदगी में किस हद तक मामिन साबित हो सकते हैं, इस पर आप क्या कहती हैं?
1: माली शमूलियत का सीधा मतलब है कि हर इंसान तक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की पहुंच हो।
0: जी।
1: जब किसी के पास बैंक अकाउंट होता है तो उसका पैसा ज्यादा सुरक्षित रहता है और सरकारी योजनाओं का फायदा सीधा उनके बैंक अकाउंट में आ सकता है। इसके अलावा बैंक से जुड़ने पर लोगों में बचत की आदत बढ़ती है और जरूरत पड़ने पर आसानी से कर्ज या दूसरी सुविधाओं का फायदा भी मिल सकता है।
0: तो बहुत उम्दा बात कही कि बैंक खाते, डिजिटल अदायगी, बीमा और पेंशन जैसी सहूलियात माली तहफ्फुज़ फराहम करते हैं, बचत को फ़रोग देते हैं और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के फवाइद बराए रास्त अवामुन नास तक पहुंचाने में मददगार भी साबित होते हैं, इसलिए इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आखिर में हमारे सामीन को आज के इस प्रोग्राम के तहत आप क्या पैगाम देना चाहेंगी ताकि वो अपनी आमदनी, खर्च, बचत और सरकारी स्कीमों से फायदा उठाते हुए एक मजबूत और मुतवाजिन मुआशी जिंदगी गुजार सके।
1: मैं अपने सभी लिसनर्स से बस इतना कहना चाहूंगी कि आपकी आमदनी कम हो या ज्यादा, पैसों का सही इस्तेमाल और थोड़ी बचत करना बहुत जरूरी है। सोच समझकर खर्च करें, जितना हो सके बचत की आदत डालें और सरकार की फायदेमंद स्कीम्स की जानकारी लेकर उन सबका लाभ जरूर उठाएं। याद रखिए, आज की छोटी छोटी आपकी बचत सही फाइनेंशियल डिसीजन कल को सुरक्षित बनाता है। बचत की आदत हमें घर में शुरू से डालनी चाहिए ताकि वक्त आने पर उसका सही इस्तेमाल किया जा सके। आजकल कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि SIP हो गया, बैंक अकाउंट खुलवाना हो गया। बैंक अकाउंट जरूर खुलवाएं, उससे आपकी बचत की आदत बनती है। हर महीने थोड़ा पैसा अलग रखें अपनी आमदनी से ताकि जरूरत आने पर उसको इस्तेमाल किया जा सके।
0: तो बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया, बहुत ही उम्दा आपने मैसेज दिया है कि अपनी आमदनी के मुताबिक खर्च करें, बाकायदा बचत करें, सोच समझ कर सरमायाकारी करें, सरकारी स्कीमों से फायदा उठाएं और माली नज्म व ज़ब्त को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यही माशी खुशहाली और पायदार तरक्की का रास्ता है। सामीन, आज की संजीदा और बामकसद गुफ्तगु से ये हकीकत वाज़ह होकर सामने आती है कि माशी इस्तेहकाम का राज ज्यादा आमदनी में नहीं बल्कि आमदनी और अखराजात के दरमियान मुनासिब तवाजुन कायम रखने में है। अगर हम अपनी ज़रूरियात को तरजीह दें, फजूल खर्ची से बचें, बचत की आदत अपनाएं और माली मनसूबा बंदी के साथ जिंदगी गुजारें तो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने खानदान की माशी जिंदगी को भी ज्यादा महफूज और पुरसकून बना सकते हैं। और अब हम अपने मेहमान खुसूसी CA मोहतरमा अरूबा मुमताज साहिबा के बे इंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आपने हमारे सामीन के लिए बहुत ही अच्छी और उम्दा मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अपने मेजबान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के प्रोग्राम में आज के फनकार हैं हरिहरन।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
4: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है,
5: बच्चे भी खरीद सकते हैं।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B फार्मा M फार्मा और D फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए। मुशीर झुनझुन झनवी का कलाम पेश कर रहे थे हरिहरन।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
6: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
7: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
6: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
7: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

सुगम संगीत का हमारा ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। आज के फनकार हैं हरिहरन।

0: इसरार अंसारी का कलाम पेश कर रहे थे हरिहरन। इसी के साथ सुगम संगीत का हमारा आज का ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, 10 बज रहे हैं। अब सुनिए दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: पहले हिंदी में और ठीक उसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया में वे राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ प्रबंधन मंदिर जाएंगे और भारतवंशियों से भी बातचीत करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
3: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। असम विधानसभा का बजट सत्र आज गुवाहाटी के दिसपुर में शुरू हो रहा है। नवगठित विधानसभा के पहले बजट सत्र में 16 कार्य दिवस होंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुमान 2026-27 10 जुलाई को पेश किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरणों में सुधार किए जाएंगे। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। मौसम विभाग ने आज

0: रात कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज वर्षा का अनुमान है। वहीं ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Rakel. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand.
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। आप सभी को नूतन मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। जवानी दीवानी, इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार और इनके साथियों की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आरडी वर्मन ने और इस गीत की फरमाइश की है अजय त्रिपाठी, सुषमा, रंजू, अनीता सौरभ और समीर कुशीनगर से।

जवानी दीवानी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म अनाड़ी फिल्म का गीत। आवाज अलका याग्निक और उदित नारायण की है। गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। इस गीत को सुनना चाहती हैं आनंद नगर महाराजगंज से सुरेंद्र जी, दुर्गावती जी और इनकी नन्ही सी पोती जानवी।

अनाड़ी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मन से है। आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की हैं। गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत से सजाया है संजीव दर्शन ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है रोहित, मुकेश, पूजा और खुशबू शर्मा नौतनवा महराजगंज से।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B-Pharma M-Pharma और D-Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
6: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
5: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
6: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
7: गाते गुनगुनाते ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। अगले गीत की फरमाइश की है ग्राम पिपड़ा पोस्ट कलानी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से राजा राम अहिरवार, कौशल्यतम अहिरवार, मोहनी अहिरवार और शिवा अहिरवार ने। इसी गीत को बेरड़ी मध्य प्रदेश से सुनना चाहा है हुकुम करमकर और सुनीता करमकर भी, और साथ ही ग्राम खक्कल विकास खंड नदीगांव तहसील कोंच जालौन से इस गीत को सुनना चाहते हैं दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और इनके परिवार के सभी लोग। तो लीजिए सुनिए इन सब की फरमाइश पर फिल्म मंजिल का ये गीत, जिसे आवाज़ दिया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है योगेश ने और संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

मंजिल फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, गाते गुनगुनाते। इस कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है, फिल्म है एक दूजे के लिए। आवाजें एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की हैं और इस गीत को सुनना चाहते हैं लखनऊ से अनिल पांडे, पुष्पा पांडे, शिखा पांडे, एंजल और शिबू। इसी गीत को मुहद्दीपुर

आवाज लता मंगेशकर की है। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, और सालार पहलगाम से इस गीत को सुनने की फरमाइश की है पीरजादा मिराजुद्दीन ने। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म लैला मजनू का ये गीत।

लैला मजनू फिल्म का गाना अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में गाते गुनगुनाते। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। अगले गीत की फरमाइश आई है, फिल्म है बैराग, आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीत आनंद बख्शी का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से गंगा सिंह रावत, सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, पुनावले पुणे से इस गीत को सुनना चाहते हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवड़े। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म बैराग का ये गीत पेश है।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाए।
2: स्वच्छता अपनाए, स्वास्थ्य का आनंद उठाए।
1: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
2: स्वच्छता की आदत स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
3: राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विश्व दृष्टि दिवस पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में प्रदेश वासियों के लिए लव योर आईज की थीम के अंतर्गत निशुल्क नेत्र जांच, चश्मा वितरण और मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी इस संकल्प को लेकर आम जनमानस में नेत्र रोग के उपचार की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस अवसर पर अपनी आँखों से जुड़ी रोग की समस्या को दूर करने के लिए निशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाएं।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
0: गाते गुनगुनाते इस कार्यक्रम का अगला गीत है, फिल्म है आया सावन झूम के। आवाज मोहम्मद रफी की है और इस गीत को सुनना चाहते हैं पारसमढ़ी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा। और इस गीत को सुनना चाहते हैं गांव कलमंडी खुर्द जिला झालवाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप पवार और समस्त राजपूताना परिवार।

अभी आपने आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत सुना। गाते गुनगुनाते में अगला गीत हमने लिया है, फिल्म है कटी पतंग, आवाज़ मुकेश की है और इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द, सरिता मालवीय, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अन्नू गोस्वामी, और बांसुरी नगर पीलीभीत ढकिया केसरपुर से इस गीत को सुनने की फरमाइश की है एके राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, भगवान दास राजपूत, मदन लाल राजपूत, रवि कुमार, क्रिया प्रिया, किरण संतोषी और छोटी गुड़िया चंचल।

0: गली में।
1: मुकेश को अभी आपने सुना फिल्म कटी पतंग में। अगला गीत फिल्म चांदनी से है और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से रामचंद्र मखीजा का फिर भाई श्रीमती सविता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, दीपक, मोनू, उन्नति, धनशानी, कीरत राय वाधवानी, प्रदीप कुमार साहू एवं पूरा मखीजा परिवार।

गाते गुनगुनाते। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। अगला गीत है फिल्म इंतकाम से। फरमाइश करता हूं के नाम इस गीत के बाद

इंतकाम फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। इस गीत की फरमाइश की थी रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये फरमाइशी कार्यक्रम गाते गुनगुनाते अब यहीं संपन्न होता है। नूतन मिश्रा को अनुमति दें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन तथा टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरण में सुधार किए जाएंगे। कर्मचारियों को मतदाता विवरण, नई तस्वीर, ईपीआईसी कार्ड, आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा है कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। फीफा में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के कुछ क्षणों बाद ही उन्होंने ये घोषणा की। फीफा विश्व कप के एक अन्य मैच में आज इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: 좋아.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के कलाकार हैं बृजराज दुबे।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार,
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की।

आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि में मैं अपर्णा आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, संगीत हमारी भावनाओं का सच्चा साथी है। यह कभी प्रेम का एहसास कराता है, कभी यादों को ताज़ा करता है और कभी जीवन को नई उम्मीदों से भर देता है। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म अजहर से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अजहर से ये गीत। स्वर और संगीत था अरमान मलिक का, बोल थे रश्मि विराग के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म MS धोनी से अरिजीत सिंह की आवाज़ में, संगीत अमाल मलिक का और बोल लिखे हैं मनोज मुंतासिर ने।

बिछड़ने के बाद भी प्रेम और यादों को संजोए रखने वाला ये भावपूर्ण गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म से।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म एयरलिफ्ट से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की, संगीत था अमाल मलिक का और बोल थे कुमार के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं श्रोताओं, फिल्म बजरंगी भाईजान से, स्वर मोहित चौहान और पलक मुच्छल का, संगीत प्रीतम का, बोल मयूरपुरी के।
1: भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते गुनगुनाते
3: सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

गीत का कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं, फिल्म ऑल इज वेल से अजीत सिंह की आवाज़ में। संगीत है हिमेश रेशमिया का और बोल शब्बीर अहमद के।

संगीत के इन सुरीले पलों के साथ आज का गीतांजलि कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
1: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
2: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
2: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
2: 8800440559। और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओ। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
3: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
3: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
1: जी,
3: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता

0: उपलब्ध कराने से संबंधित है
1: जी,
0: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहले हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
0: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। इस 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
1: जी।
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार के नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं उसके ऊपर

0: अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं,
1: जी
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना।
1: जी
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है, उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी। और नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा।
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का
1: चाहिए।
0: संकोच नहीं करना चाहिए।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है।
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से।
1: जी,
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी।
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
1: बिल्कुल।
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी।
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहें, क्योंकि अगेन क्या होगा?

0: कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ
1: जी,
0: कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं
1: जी,
0: कि आप ऐसा करिए कि आपको चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें। क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है,
1: मनोबल
0: बढ़ता है।
1: जी, जी।
0: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल
0: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर, या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो, जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी।
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे, तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो

0: में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उससे बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है। एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ, होता है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी?
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि हैं उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है, रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करें, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करें। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
1: ये
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं।
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8 4

0: चार आठ चार चार शून्य छः तीन दो 8448440632 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansail@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है FM संगीत का कार्यक्रम गीत सुहाने।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ से फिल्म घर से। इस गीत को संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने और गीतकार हैं गुलजार।

किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे घर फिल्म से ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म काजल से। प्यार और अपनापन लिए ये गीत अपने मधुर बोल और संगीत के कारण आज भी बेहद लोकप्रिय है।

0: काजल फिल्म के इस गीत को अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत था रवि का और गीतकार साहिर लुधियानवी।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
5: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
6: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
5: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
6: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
5: गाने के बोल,
6: गीतकार
5: और संगीतकार
6: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
5: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
6: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
5: गाते
6: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर,
5: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
0: आकाशवाणी गोरखपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सुहाने, और कार्यक्रम में अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसने प्रेम को एक नई पहचान दी। फिल्म है कटी पतंग, इसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत है RD बर्मन का और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: फिल्म गाइड से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, संगीत सचिव देव बर्मन का और बोल थे शैलेंद्र के। इन्हीं मधुर गीतों के साथ गीत सुहाने कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
3: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार थे गुलाम अली। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यौम पैदाइश पर उनके मुजस्समे पर गुलपोशी करके उन्हें खिराज अकीदत पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हुब्बुल वतनी पर मबनी ज़िंदगी, बेमिसाल हिम्मत, मुत्तहिदा भारत के लिए अटल लगन और अवामी खिदमत का आइडियल हर नस्ल के लिए मशाल राह है। उनके नज़रियात कौम की तामीर और अवामी खिदमत के रास्ते पर हमेशा रहनुमा रहेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में मुनक्किद शक्ति केंद्र कोऑर्डिनेटर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन, बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब योगी

0: कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत मुसलसल तरक्की पर मबनी और अवामी बहबूद के काम कर रही है।
1: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
0: इस मौके पर बीजेपी की कौमी सदर नितिन नवीन ने कहा कि माजी में हमारी क़यादत उन मसाइल के बारे में अवाम के तई चौकस रही, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ था। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने कल लखनऊ में पार्टी के सीनियर लीडरों, साबिक सुदूर और एनडीए के इत्तेहादियों के साथ एक अहम मीटिंग की। मुलाकात के दौरान 2027 के असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सदर नितिन नवीन ने खिदमत और तरक्की के एजेंडे पर खसूसी जोर दिया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने अराकीन की मीटिंग बुलाई है। इजलास में कई अहम इंतजामी और मालियाती उमूर जेर बहस आएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 28 जून को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। विज्ञप्ति के मुताबिक अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य मामले पर भी चर्चा हो सकती है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस दरमियान अयोध्या श्रीराम मंदिर चढ़ावा केस में तफ्तीशी अफसर ने कल जिला जेल में 8 में से 5 मुलजमीन से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के काली घाट पर वाक़ प्रेरणा पार्क का इफ्तिताह करेंगे। इस पार्क में वो कौम की तामीर के अलमबरदार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, साबिक वज़ीर आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय सकाफत के अलमबरदार अशोक सिंघल के मुजस्मों की नकाब कुशाई करेंगे। देही तरक्की के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले विकसित भारत रोज़गार और रोज़ी रोटी गारंटी मिशन देही 2025 के कामयाब निफास पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को सिर्फ एक दिन में पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। कल मरकज़ी वज़ीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस मिशन के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपये की इमदाद जारी की। रियासती पंचायती राज के वज़ीर ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया है कि हुकूमत गांव में उत्सव भवन तामीर करेगी। इन उत्सव भवनों में कम आमदनी वाले अफराद कम कीमत पर शादी और दीगर तकरीबात का इनेकाद कर सकेंगे। अंबेडकर नगर में ज़िला पंचायत सदर के दफ्तर के इफ्तिताह के दौरान ज़िला इंचार्ज वज़ीर ने कहा कि ज़िला पंचायत महकमा देही इलाकों की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। इस मौके पर जिला पंचायत सदर साधु वर्मा और जिला मजिस्ट्रेट ईशा प्रिया भी मौजूद रहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।

नमस्कार बहनों, हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती हैं और जब उम्मीद के साथ जुड़ जाए जागरूकता तो बदलती है सोच, बदलता है समाज और बदलती है जिंदगी। बहनों, आप सुन रही हैं आकाशवाणी गोरखपुर, मैं हूं संध्या त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी जगत में। बहनों, यह सिर्फ महिलाओं का कार्यक्रम नहीं है बल्कि उस परिवार की आवाज़ है जहाँ सपने हैं, संस्कार हैं और बेहतर

भविष्य की उम्मीद है। तो आइए आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच भर देती है। तो बहनों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, गाइड फिल्म का ये खूबसूरत गीत बहुत ही मधुर और प्रेरणादायक है। और बहनों, सच ही तो है, जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हों। बहनों, स्वस्थ जीवन केवल अच्छा भोजन या और नियमित व्यायाम करने से ही नहीं मिलता, बल्कि छोटी छोटी सावधानियां भी हमें अनेक बीमारियों से बचाती हैं। बहनों, कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर हमारे पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।

इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए बहनों, आज का हमारा विषय है विश्व जूनोसिस दिवस। यह दिन हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को उन बीमारियों के प्रति जागरूक करना है जो पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती है। बहनों, जूनोसिस शब्द सुनने में भले नया लगे, लेकिन इसका संबंध हमारे रोजमर्रा के जीवन से है, विशेषकर उन परिवारों से जो पशुपालन से जुड़े हैं या जिनके घरों में पालतू पशु हैं। बहनों, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली और अन्य पालतू पशु हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। वे हमें सहयोग भी देते हैं और स्नेह भी देते हैं, लेकिन उनकी देखभाल और स्वच्छता का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना हमें अपने घर की और अपने बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। बहनों, यदि पशु बीमार हों या उनकी साफ़ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो कुछ संक्रमण हम मनुष्यों तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए पशुओं का समय समय पर टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छ पानी, साफ चारा और उनके रहने के स्थान की सफाई बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बहनों, पशुओं के संपर्क में आने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना एक छोटी सी आदत है, लेकिन यह हमें कई बीमारियों से बचा सकती है। बहनों, बरसात के मौसम में संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है, इसलिए इस समय विशेष सावधानी बरतने की भी आवश्यकता होती है। यदि किसी पशु से असामान्य लक्षण दिखाई दें तो स्वयं इलाज करने के बजाय तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। बहनों, बच्चों को भी बचपन से ही स्वच्छता की आदतें सिखाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, और उन्हें समझाएं कि पशुओं से प्रेम करें, लेकिन उनके साथ रहने के बाद हाथ वो अवश्य धोएं और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। बहनों, याद रखिए, स्वस्थ पशु, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने पशुओं की देखभाल करते हैं तो हम अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। तो बहनों, आइए विश्व जूनोसिस दिवस के अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि स्वच्छता अपनाएंगे, पशुओं की नियमित देखभाल करेंगे, समय पर उनका टीकाकरण कराएंगे और अपने परिवार को संक्रमण से सुरक्षित रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। बहनों, इंसान और पशु का रिश्ता केवल उपयोगिता का नहीं बल्कि संवेदनाओं, स्नेह और विश्वास का भी होता है। जब हम अपने पशुओं की देखभाल करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो वे भी हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। तो बहनों, अपने घर में पालतू जानवरों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि संक्रमण बहुत ही खतरनाक होता है। किसी में भी अगर पनपे तो वो आगे चल के सेहत के लिए, हमारे चाहे बच्चे के लिए, चाहे आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए नुकसानदायक है। इसी खूबसूरत रिश्ते को बड़े ही सहज और भावपूर्ण अंदाज में प्रस्तुत करता है हमारा अगला गीत। आइए सुनते हैं फिल्म हाथी मेरे साथी का लोकप्रिय गीत

बहनों, ये गीत हमें याद दिलाता है कि पशु केवल हमारे साथी ही नहीं बल्कि प्रकृति की अनमोल धरोहर भी हैं। उनका स्नेह, उनकी निष्ठा और उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी, यही इस गीत का सबसे सुंदर संदेश है। बहनों, अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण विषय की ओर और मैं बात करने वाली हूँ बच्चों को संक्रमण से बचाने के उपाय के बारे में। क्योंकि बहनों, बच्चे हमारे परिवार की सबसे अनमोल पूंजी हैं। उनका स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रहना हम सभी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सरल उपाय और उस उपाय को अपना करके अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए। बच्चे हमारे घर की सबसे अनमोल धरोहर हैं, पूंजी हैं। उनकी एक हंसी से पूरा घर गूंज उठता है और उनका स्वस्थ रहना हर माता पिता की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। लेकिन मौसम बदलते ही, खासकर बरसात के दिनों में, बच्चों में बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में बहनों, थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी उनके स्वस्थ भविष्य की सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। बहनों, बरसात का मौसम खुशियां लेकर आता है पर साथ में मच्छर, गंदगी और संक्रमण भी लेकर आता है। इस मौसम में बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए हमें बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बहनों, बच्चे जब भी बाहर से आएं तो उनको साबुन से हाथ धोने की आदत डलवाएं। पैर भी आप धुलवाएं उनका बाहर ही। प्रयास करें कि अगर बाहर टोटी है तो उस पर हाथ पैर धुलवा करके ही उनको अंदर आने दें, क्योंकि बाहर का संक्रमण अक्सर बच्चों के साथ अंदर चला आता है। साफ पानी से हाथ धुलवाएं। प्रयास करें कि डिटॉल से कभी कभी दिन में एक बार धुलवा दें, बार बार नहीं लेकिन दिन में एक आध बार जरूर धुलवा दें। बाहर से आने के बाद खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद हाथ धोना अनिवार्य है। साफ हाथ ही आधी बीमारियों से बचाव करते हैं। बहनों, संतुलित भोजन ही मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता की कुंजी है। बच्चों के भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, दूध और पर्याप्त पानी शामिल करें। ताज़ा और घर का बना भोजन दें। बासी या खुले में रखे खाद्य पदार्थों से उनको बचाएं और खुद भी बचें। बहनों, बरसात में बच्चों को गंदे पानी, कीचड़ और खुले में जमा पानी

से बचाते हैं। बहनों, एक माँ की छोटी सी जागरूकता और सावधानी बच्चे के पूरे जीवन को सुरक्षित कर सकती है। स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, समय पर टीकाकरण और चिकित्सकीय सलाह, इन चार स्तंभों पर ही हमारे बच्चों का भविष्य स्वस्थ रहता है और वो टिकाऊ भी रहता है। बहनों, आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देंगे ताकि वे निरोग, खुशहाल और आत्मविश्वास से भरा जीवन जी सकें, क्योंकि स्वस्थ बच्चा ही कल का स्वस्थ भारत बनाएगा। बहनों, बच्चे केवल हमारे परिवार की खुशियां ही नहीं बल्कि देश का उज्ज्वल भविष्य भी हैं। उनका स्वस्थ, सुरक्षित और संस्कारवान बचपन ही एक सशक्त समाज की नींव रखता है। तो बहनों, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चों की मुस्कान निश्चल होती है और दुनिया को समर्पित भी वो रहते हैं। उनके अंदर कोई छल कपट नहीं रहता है और तेज दुनिया की बहुत सी जानकारियों से दूर रहते हैं। तो जैसा माँ बाप संस्कार देते हैं, जिस माहौल में बच्चों को माँ बाप रखते हैं, बच्चे उसी हिसाब से पनपते हैं और बढ़ते हैं। तो अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कल के वे भविष्य हैं घर के, भारत के। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

बहनों, बेहद ही प्यारा गीत और सचमुच बच्चों की मुस्कान तभी खिली रहती है जब उनका घर स्वच्छ हो, वातावरण स्वस्थ हो और परिवार जागरूक हो। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण विषय की तरफ, गृहिणी विशेष। बहनों, घर में स्वच्छता की सही आदतें ही अपनाकर हम अपने घर को स्वच्छ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं। बहनों, स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। घर हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार मंदिर की स्वच्छता से मन को शांति मिलती है, उसी तरह घर की स्वच्छता से परिवार का स्वास्थ्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। एक गृहिणी के हाथ में घर का स्वस्थ और खुशहाल चाबी होता है और वो पूरे परिवार को महत्वपूर्ण भूमिका अपनाते हुए स्वस्थ रखती है। बहनों, किसी भी बीमारी की शुरुआत गंदे हाथों से होती है, इसलिए घर के सभी सदस्यों को, विशेषकर बच्चों को, बार बार साबुन से हाथ धोने की आदत डालें। खाना बनाने से पहले, खाना खाने के बाद, शौचालय से आने के बाद, बाहर से आने पर हाथ धोना अनिवार्य। उनको बताएं कि ये बहुत ही ज़रूरी है, तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। नाखून छोटे और साफ रखें। रसोई घर का दिल होता है। यहाँ की एक गलती पूरे परिवार को बीमार कर सकती है। तो बहनों, कच्ची सब्जी और फलों का प्रयोग करने से पहले उसे अच्छे से धोएं, नमक के पानी से धोएं, ये बेहतर रहेगा। कच्चा और पका हुआ खाना अलग-अलग रखें। बर्तन साफ करके तुरंत सुखा कर रखें। गीले बर्तन में बैक्टीरिया बहुत जल्दी ही पनपते हैं। बहनों, गैस स्लैब और सिंक को रोज़ रात में साफ करके रखें, क्योंकि रात में जो भी गिरा रहता है, अनाज वगैरह, उससे मच्छर, चींटियाँ, छिपकली सब टहलते हैं और संक्रमण बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। बचा हुआ खाना हमेशा ढककर फ्रिज में रखें। बरसात में बासी भोजन से फूड पॉइजिंग का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, तो इससे आप बचें, खुद को भी बचाएं और परिवार को भी बचाएं। बहनों, रोज़ सुबह घर में झाड़ू पोछा लगाएं। पोछे के पानी में थोड़ा फिनाइल या डिटॉल मिला लें ताकि कीटाणु न पनपे घर में। कचरा प्रतिदिन डस्टबिन में डालकर बाहर फेंकें। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें। घर में रोशनी और हवा आने दें, इससे नमी और बदबू नहीं होती है घर में। बहनों, बाथरूम और टॉयलेट की सफाई रोज़ फिनाइल से करें। गीले तौलिए और कपड़े धूप में सुखाएं। पीने का पानी हमेशा ढककर रखें। आरओ का पानी या उबाल कर ठंडा किया पानी सबसे अधिक सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए माना जाता है। बहनों, बरसात में घर के आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और टायरों में पानी जमा होने से डेंगू, मलेरिया के मच्छर पनपते हैं और वो घर में आ करके संक्रमण फैला सकते हैं। खिड़कियों पर जाली जरूर लगवाएं, जिससे कोई भी बाहर का कीड़ा अंदर ना आ सके। बहनों, स्वच्छता एक दिन का काम नहीं, आदत है। बच्चों को जूते बाहर उतरवाना, कचरा डस्टबिन में फेंकना और हाथ धोना सिखाएं। जब बच्चे सीखेंगे तभी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी। बहनों, घर की स्वच्छता कोई बड़ा काम नहीं है, यह रोज की 15-20 मिनट की छोटी छोटी आदतों से बनती है। एक साफ घर में ही बीमारियां कम होती हैं, बच्चे स्वस्थ रहते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। तो आइए हम सभी गृहिणियाँ मिलकर संकल्प लें कि अपने घर को मंदिर की तरह स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि स्वस्थ घर में ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, समय का इशारा है, आपसे अनुमति लूं। बहनों, आज के कार्यक्रम के रिश्तों की नहीं है ये अनुमति, फिर किसी नए विषय, नई प्रेरणा और उसी आत्मीयता के साथ आपसे मिलूंगी अपने अगले कार्यक्रम में। इसी मधुर गीत के साथ आप सभी से अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www

0: www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली।
4: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
5: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
4: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
5: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
4: गाने के बोल,
5: गीतकार
4: और संगीतकार
5: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
4: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
5: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
4: गाते गुनगुनाते
5: सुनिए सुबह 10:05 पर।
4: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पशुओं में बच्चेदानी बाहर आने की समस्या विषय पर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश से कृष्णचंद की बातचीत।
4: डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, आप उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बासडीह बलिया में हैं, आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। डॉक्टर साहब, खेती और पशुपालन एक दूसरे से बिल्कुल लगल जुड़ल बा, दोनों के अलग नहीं कल जा सकेला। एक समय रहल जब सज्जी कम हुए खेती के जौन बा जानवरन से होत रहल, लेकिन अब जौन बा जुग जमाना बदल गेल, ओकरे जगह पे तमाम जौन बा कृषि यंत्र आ गए, फिर भी पशुअन का महत्व अपने जगह पे बरकरार बा। आज के समय में लोगों के पास दुधारू जानवर ज़्यादा बाटे। दुधारू पशुअन में एक समस्या अक्सर देखले में आवला कि उनकर बच्चेदानी जौन बा कबो कबो बाहर आ जाला। हम आपसे जानल चाहब कि एकरे पीछे का कारण बा।
5: हम अपने पशुपालक भाई के नमस्कार करत बानी। पशुपालन में सबसे बड़ी समस्या दुधारू पशुअन में जौन बा बच्चेदानी के बाहर निकरब बा। एकर कई कारण हो। एक तो मतलब पैतृक जौन बा बनावट ओकर एनाटॉमिकल जौन शरीर के बनावट बा वह कारण से भी निकलला। दूसरा हार्मोन जौन शरीर में कंट्रोल कराला रास्ता वगैरह के वह नाते भी निकलला। और तीसरा कारण ये होला कि कहीं जौन बा आप गलती से अगर सांड से या भैंसा से क्रॉस करवले बाटी उसे इन्फेक्शन वगैरह आवा था।
4: अच्छा,
5: तो बार बार जौन बा बाहर फेंकाला, मैंने जौन भी फॉरेन बॉडी या मतलब जौन बाहरी तत्व होला ओके बार बार बाहर निकाले कोशिश करा था कराला हमें
4: जी,
5: जिससे हमारे पशु दुधारू पशुओं में सबसे ज़्यादा नुकसान होला। और आगे चल के यह हमें इतना इन्फेक्शन

0: टेंशन हो जाला बाहर निकलने से बच्चेदानी के, कि आगे रुकले में, जैसे अगली बार जब आप गाभिन कर रही हैं तो रुकले में सबसे बड़ी समस्या हो।
1: कई बार बच्चा देत समय भी जो बच्चेदानी बाहर आ जाला,
0: बच्चा देत के समय तो बच्चेदानी बाहर ना वाला, ओकरे कुछ क्षण 10-15 मिनट या आधा घंटा के बाद बच्चेदानी बाहर आ जाला। एकर मुख्य कारण जौन आपके बतौली हैं, या तो शरीर के बनावट ऐसा हो कि जौन हड्डी वो हो कि बार बार थोड़ा सा रास्ता उ फैलल हो जौन नाते बाहर निकलल करल हो, या इन्फेक्शन वगैरह से हो, या हार्मोन में प्रोजेस्टान के कमी हो। तो प्रोजेस्टान के कमी होला तो अनाते भी बार बार, तो बार बार जब आवे लगला तो रास्ता जौन बा फैल जाला, ऐसे फिर रोकब ओकरे लिए आवश्यक।
1: तो ऐसा समस्या अगर आवत बा अपने पशुओं में तो तुरंत में पंच भाई का उपाय करें?
0: हम अपने पशुपालक भाई से सबसे पहले निवेदन ये करब कि जब भी अगर बच्चेदानी बाहर आवता तो जवन भी उनके लगे एंटीसेप्टिक उपलब्ध हो के धो के या थोड़ा साफ कपड़ा से सुखा के ओके तो अंदर कह दें। और दूसरा उपाय ये है कि खूंटा के तरफ हमेशा थोड़ा सा नीचा रखें, जो बच्चेदानी वगैरह जो पूर्व भाग बा वो आगे की तरफ भाग जा, पीछे की तरफ दबाव कम रहे।
1: मतलब जो उनके पशुओं के बांधे के जगह बा खूंटा के तरफ थोड़ा खाल रखें।
0: हाँ, थोड़ा सा तरसिरवा जो कहे ना हमारे ये गोरखपुर में तरसिरवा रखें, जो खूंटा और नीचे रहे और पीछे और ऊंच रहे।
1: जी अच्छा, ये समस्या सारा पशुओं में ही हो सकेला जो दुधारू पशु बांटने?
0: नहीं, सब में ना होला। आपके बता दें कि 3-4 कारण हैं कि एक तो जौन बा ओकर बनावट बच्चेदानी के, और वो दूसर ये है कि हमें हार्मोन के प्रोजेस्टान के कमी
1: जी,
0: और तीसर ये कारण है कि इन्फेक्शन वगैरह कहीं जौन बा संक्रमण हो गई वह नाते हो।
1: अच्छा, आप सब एकर का जौन बा उपाय बताओ जला?
0: हमके उपाय जैसे हमें कई कारण, एक चीज़ और बा कि हार्मोन वगैरह जैसे अगर बार बार फेंकता तो वह समय हार्मोन प्रोजेस्टान कहे कि गर्मी में जब पशु आवाला तो इस्ट्रोजन हार्मोन के ज़्यादा अधिकता हो ले।
1: जी,
0: जब पशु जौन बा रुक जाला वह हमें का मैंने कंसेप्शन मतलब ये कि दोनों के मादा और नर के जौन बा दोनों के जब स्पर्म और अंडा जौन बा मिल जाले तो ओकरे बाद जौन बा प्रोजेस्टान के मात्रा बढ़ जाले, ओवरी जौन बा वह हमें जौन भाई एकदम कांस्ट मतलब वो जो है फिर फैलती नहीं, वो अपने को कांस्टेंट हो जाले।
1: जी
0: ऐसे तो हार्मोन के उपलब्धता, या अगर यह तरह के स्थित बाय तो बियाइले के जैसे मान लें कि एक अनुमानत है बियाइले के 20 दिन या 25 दिन पहले से मार्केट में पोषक तत्व का एकर इतना मने भरमार आ गई बा कि जितने में जोने में जोन पोषक तत्व आपके ज्यादा हो और हार्मोन हो ओके प्रयोग करे चाहिए।
1: अच्छा, एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाह कि मान लें कि कौने पशु में समस्या आ गई, जैसे ना आपकी कह लें कि जौन बा बनावट के हिसाब बनावट में अगर कुछ गड़बड़ी बा तो का एक सुधारल जा सकेला?
0: नहीं, बनावट में तो ना सुधारल जा सके, बनावट वाले स्थिति में जहाँ मतलब ओकर फैलर रास्ता हो के सुधार के कौन बहुत थोड़ा बहुत सुधार तो कर जा सकाला, जैसे ताकत का मैंने प्रोटीन और जितने वो बाटे हैं सब कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस वगैरह दे के उसे कम कर जा सकाला।
1: जी जी, आप शुरू शुरू में कह लें कि कुछ पैतृक कारण भी होला, की कैसे प्रभावित करेला?
0: नहीं, पैतृक कारण वही मतलब जो मतलब ओकर बनावट हो।
1: जी,
0: बनावट के आधार पर ही मान लीजिए पैतृक कारण में कि ओकर रास्ता पहले से ही फैलल बा या माहतारी के अगर फैलल रहा तो हमें कोनो ओके सुधार के गुंजाइश और ना।
1: अच्छा, मान ली कोनो पशु के बच्चेदानी बाहर आ रहा बा तो का जौन ओकर होखे वाला बच्चा बमन भी समस्या आ सके?
0: नहीं, कोनो दिक्कत नहीं।
1: अच्छा, तो डॉक्टरी हिसाब से जौन बा एकर का इलाज बा?
0: तो आपके बतौनी अगर यह तरह के स्थित हो पहले तो आप जौन बा पीछे ऊँच कह दी आगे खाल कह दी हार्मोन के इंजेक्शन ओकरे साथ ही जौन बा कैल्शियम फास्फोरस या मैंगनीज जितना पोषक तत्व हैं ओकर जौन बा इंजेक्शन के रूप में या मुंह के द्वारा उपलब्ध कराई। और थोड़ा सा देख रेख ही करें हमारे पशुपालक भाई कि जैसे बाहर निकलल बा तीना कि उसे थोड़ा सा अपने देख रेख में रखें कि अगर मैंने फिर निकला था तो ओकर फिर जौन बा हो सके सुधार हो सके।
1: अच्छा, ऐसा पशुओं के खान पान पर भी कुछ अलग से ध्यान रख

0: कपड़ी
1: जी हमेशा एक नाते आपके कहनी है कि कम से कम वैसे तो पशुपालक के जब मतलब बच्चा धारण कइले हो तो शरीर के मेंटेनेंस करे खातिर 1 किलो दाना
0: जी
1: तो वैसे दिहल जाला सब पशु के। लेकिन अगर गर्भधारण कहके अंतिम अवस्था में आओ तो 5 के ऊपर जाता तो फिर दाना के मात्रा और पोषक तत्व तो मिनरल मिक्सचर वगैरह और जितना वा ये आप बढ़ा के आप दें।
0: अच्छा, मतलब एक तरह से उनके जौन बा आहार होके के चाहिए।
1: होके चाहिए
0: अच्छा, ऐसा जौन पशु बा ओके पशुशाला में सज्जी पशुओं के साथ में बांधल जा सकेला, क्योंकि अलगे कहीं बांधे के चाहिए?
1: अलग बांधे चाहिए। पशुपालक भाई माने पशुशाला में अगर ज़्यादा पशु बांटे एक से अधिक हैं दो से तो उसको अलग बांधने से ही फायदा आपके हुई कि कम से कम वह समय अगर निकले तो दूसरे का रगड़ वगैरह से ज़्यादा बच्चेदानी जो है प्रभावित ना हो।
0: जी। अच्छा, एकर कोनो ऐसा अवस्था है कि वो अवस्था में पशुओं में समस्या ज्यादा हो सकेला?
1: अच्छा अवस्था के मतलब ये कि जैसा उम्र बढ़ाला व्यात बढ़ेले
0: जी
1: शरीर में मतलब बीमारी से या रेजिस्टेंसी पावर जौन बा कम होत जात हो
0: मतलब बीमारी से लड़ने का क्षमता
1: क्षमता कम होत
0: हाँ कम हो
1: हो
0: जाला।
1: तब वह समय ज्यादा चांसेस।
0: तो एकर मतलब कि अगर पशुमन के जौन बा ठीक ठाक चारा दिहल जाए, दाना खरी दिहल जाए कि जौन बा उ ताकतवर बनल रहे, तो ये समस्या कम हो सकेला?
1: बहुत कम हो सकला अगर शुरू से हमारे पशुपालक भाई एक कौनों मतलब पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क में रहें
0: जी
1: तो संपर्क में रहें तो वो अपने अवस्था के अनुसार बता के जैसे 3 महीना में गाभिन चेक कराने के उपरांत ओकर खियोले पियोले की व्यवस्था जौन बा थोड़ा आवरण से अलग कर देवे।
0: अच्छा, जौन भी पशुपालक भाई बैठे हैं उनके पास अगर ऐसा पशु बा उन्होंने समस्या बा, तो संदेश रूप में आपका कहल जाए?
1: संदेश रूप में पहलों बतौली हैं आपके कि पशु अपने मतलब स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी से आपके कहली हैं जब ये आप एकदम जानकर मैंने कन्फर्म हो जाए सुनिश्चित कर लें कि हमारे पशु गाभिन हो गई बा 3 महीना के उपरांत तो ओकरे खिलौले पियौले के एक चार्ट टाइप का वह डाक पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय से मिल के जरूर बनवा लें जैसे जौन बा ऐसा समस्या से निदान पावल जा सकल।
0: डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, आप हमारे कार्यक्रम में अली और पशुओं में बच्चेदानी बाहर अइला का समस्या और एकर का उपाय बा एकरे बारे में इतना निमन जानकारी दिली, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi embarks on 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai-Pune expressway due to landslides. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over parts of Madhya Maharashtra, Gujarat, Goa and Chhattisgarh for today. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals, defeating world number one Aryna Sabalenka. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said his visit to the three countries will further strengthen India's Act East policy, Mahasagar vision

0: together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia, and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. The Intergovernmental Group of Experts is the principal intergovernmental platform for cooperation and dialogue on consumer protection law and policy. Secretary Department of Consumer Affairs Nidhi Khare will chair the session. She will preside over the three-day deliberations and guide discussions among member states on key global consumer protection priorities. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
1: In Ukraine, at least 10 people were killed and 46 others were injured after Russia launched a ballistic missile attack on the capital, Kiev, this morning. This came a day before a key NATO summit in Turkey, which US President Donald Trump is expected to attend. Ukraine's Air Force said Russia used ballistic missiles, cruise missiles and drones in the attack. England stormed into the FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over Mexico at the Azteca Stadium in Mexico City today. In another match, Brazil's veteran player Neymar Jr. announced his retirement from international football after the five-time world champions suffered a stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup round of 16 last night. For Brazil, the defeat marked a seventh consecutive World Cup knockout loss to European opposition. In Wimbledon tennis, Serbia's Novak Djokovic defeated Roman Safiulin of Russia to reach the men's singles quarterfinals last night. Djokovic will next face either Felix Auger-Aliassime or Alejandro Davidovic Fokina in the quarterfinals. In another encounter, Naomi Osaka produced one of the biggest upsets of Wimbledon 2026, defeating world number one Aryna Sabalenka 6-2, 7-6 to reach her first quarterfinal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai Pune Expressway due to landslides. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals by defeating world number one Aryna Sabalenka. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्र

0: राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
3: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8 लाख

0: 30,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
1: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। जगन्नाथ
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
3: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले

0: महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में दो दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 303.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पे ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बक्सिङ खेलमा भारतीय खेलाडीहरूलाई मार्गदर्शन गरेको योगदानलाई कदर गर्दै उनलाई सन् 2021 राष्ट्रिय पुरस्कार द्रोणाचार्य अवार्डद्वारा सम्मानित गरियो।
1: मुक्केबाजी कोच सुश्री सन्ध्या गुरुङ ने लोबलीना बोरगोहेन, जमुना बोरो, सिमरनजीत कौर जैसे उत्कृष्ट मुक्केबाजों को प्रशिक्षित किया है। सुश्री संध्या गुरुंग को वर्ष 2021 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री संध्या गुरुंग।

सुंदरखंड थे देशभक्ति गीत हमें आकाशवाणी को खरसाऊ केंद्र बाटे एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज को तरंगमा बोली रहे छूं समय इस वाला अपराह्न 4 बजे श्रोताओं को सुनाने लग रहे छूं हमरो साप्ताहिक प्रस्तुति विज्ञान दर्पण

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पे ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज चुके हैं। संपन्न होती है हमारी प्रथम प्रसारण सभा। सायं 5 बजे सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। FM बैंड पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। नमस्कार।
1: जीवन शैली का प्रभाव, तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशालता देवलेकर, जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशालता देवलेकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है PCOD। ये PCOD क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: यस, अभी PCOD यानी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और PCOD क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। PCOD के दो है, PCOD और PCOS। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो PCOD है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और PCOD में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो PCOS है जो उसमें मल्टीपल

0: डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है ये, आजकल यही है पीसीओएस।
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें, खतरा क्या है?
0: पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही यही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
1: तो पीसीओडी असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल इम्बैलेंस?
0: पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी, तो इसका बहुत ज्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है, और ज्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज्यादा दिखता है
1: जी।
0: ये जो डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंज डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और ये तीन फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
1: जी।
0: और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है, और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर सब हो जाता है
1: जी। तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स हाँ। नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हाँ। हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
0: हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना, और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्कैंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाना, कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 महीने आते हैं, ये 6 मंथ भी नहीं आते हैं, और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं, वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
1: जी।
0: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चीन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड वो सब होता है
1: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
0: हाँ, इसका इलाज संभव है, इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस, पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं पेशेंट, वेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
1: मेडिटेशन,
0: हाँ वो थोड़ा, तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं, 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है, और डाइट।
1: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: अच्छा, एक प्यार का नगमा,
1: एक प्यार का नगमा है मौजू की रवानी, सुनते हैं ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: इस गाने के बाद डॉक्टर आशा लता, आपने जिक्र किया था कि पीसीओडी यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। हाँ, पहले जांच पद्धति बताइए। हाँ, किस तरह
1: तो
0: से ट्रीटमेंट,
1: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी।
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है और वो खाली पेट करते हैं, उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, पीपी, और उसमें कुछ आ गया 120 110 120 के आसपास तो HbA1c, ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है। इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत जरूरी है। और मेल पार्टनर में हम सेमेन काउंट, सेमेन एनालिसिस करते हैं।
0: और अभी तो तकनीक काफी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी के जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या?
1: हाँ, वो थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी, IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोज देते हैं, टेट्राजोल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर

0: और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक ही चीज़ ही टेस्ट रहता है।
1: जी।
0: तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं। हाँ
1: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं पीसीओडी और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब पीसीओडी का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण हैं जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इरेगुलर होता, कई बार कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और।
0: यूटेराइन फाइब्रॉइड और सीस्टी जो है, तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज़्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
1: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं है?
0: यूएचजी में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है,
1: जी,
0: सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको।
1: तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
0: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट ही देना ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है उसकी।
1: जी, तो एक गाना और सुने आपकी पसंद का,
0: अजीब
1: कौन सा?
0: दास्ता।
1: अजीब दास्तां है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए, हार्मोनल असंतुलन होता है तो और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती हाँ। छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इसमें, उसको नजरअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज्यादा।
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली। जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है ऐसा मुझे लगता है। और डीप ब्रीदिंग, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है
0: जी। डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए?
1: डाइट
0: किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते,
0: 35%
1: हाँ। तो डाइट में, डाइट ही बहुत जरूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत जरूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज्ज़ा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800-2000 तक कैलोरीज, और बच्चियां लड़कियां खाती है 4000-5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है पीसीओडी में, पानी पीना है 3 से 4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाय आलमंड, वाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शिरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत जरूरी है, जैसे सभी मेथी, पालक ये सब, और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर, शुगर एकदम बंद, पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते हैं, शुगर, मैदा, वाइट जो चीजें, राइस जैसे,
0: जी
1: हाँ। और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को, कि थोड़ा

0: लो, तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना ज़रूरी है, हम उनको बोलते हैं जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन D3 हो
1: जी
0: गया,
1: जी
0: विटामिन
1: जी
0: डी, ये
1: और
0: बोलते हैं।
1: विटामिन डी
0: हाँ
1: धूप से
0: सन,
1: ही मिलता है,
0: हाँ
1: और
0: सनलाइट, हाँ
1: आजकल धूप की बहुत कमी
0: बहुत
1: है।
0: कमी है।
1: लोग एयर कंडीशन
0: हाँ
1: कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता
0: ऐसी,
1: नहीं, तो धूप सेकना बहुत ज़रूरी है। धूप का ही एक गाना है,
0: हाँ
1: एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से। आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई
0: नहीं
1: और गाना।
0: नहीं जरूर, वो बहुत अच्छा गाना है।
1: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है?
1: डाइट का बहुत सारा योगदान है।
0: तो और क्या क्या डाइट्स ले सकते हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ता है और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीजें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: नहीं खाना चाहिए,
1: समोसे के ट्रांसफैट
0: के लिए मुश्किल है,
1: ये ट्रांसफैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड, नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर एक बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या करना?
1: फ्रूट्स से नेचुरल शुगर मिल जाती है
0: जी,
1: हाँ, तो मतलब फ्रूट्स इंटेक कीजिए।
0: जब अगर शक्कर छोड़े तो फल जरूर खाए।
1: फल जरूर खाए, और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ, बिल्कुल गलत है। शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है,
0: मीठा वो भी
1: मीठा, हाँ, हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती है,
0: वो खा सकते हैं,
1: खा सकते हैं।
0: और पीसीओडी जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है,
1: हाँ, क्रॉनिक,
0: तो उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है?
1: हाँ,
0: क्या निजात,
1: क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होती है पीसीओडी के पेशेंट की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत ही होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, अनफर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है।
0: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
1: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
0: हाँ। चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं, बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: झिलमिल सितारों के
0: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं।
1: हाँ।
0: जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए, इसके बारे में कुछ?
1: अभी जो है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग, पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है,
0: जल्दी आ जाता
1: है। हाँ, जल्दी आ गया है। हम लोगों में जब 14 to 16 था, 12 से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज्यादा डरने की चीज है, डरने की चीज।
0: तो क्या वजह है इसकी?
1: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं। हाँ, कोक, ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज़ है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है।
0: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
1: गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
0: क्या समस्या है और इसका इलाज कैसे होता है?
1: गर्भाशय के साइड में 2 गर्भनलिकाएं रहती है, और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, 30, 20, 30। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, इसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर ना आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओवरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
0: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है, क्या ऑपरेशन होता है या दवा?
1: वो सिस्ट तो नेचुरल सिस्ट, मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज, पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है।
0: जी, तो उसका कोई खतरा नहीं?
1: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
0: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: सुरमई अखियो।
0: सुरमई अखियो में
1: नन्ना मुन्ना सपना,
0: सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा लता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर, हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आईवीएफ तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जैसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ, चलो तो डायरेक्टली आईवीएफ नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफर होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं।

0: नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन्स देख के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है, और फिर IUI का सेटिंग करते हैं। IUI भी नहीं हुआ तो
1: IUI क्या है बताइए
0: IUI है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको,
1: जी।
0: डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं।
1: इंजेक्शन के
0: IUI जब
1: माध्यम से।
0: करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो, और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, एजियोस्पर्मिया उसको जो बोलती है, तो डोनर से बोल लेते हैं। लैब में ये सब किया जाता है,
1: लैब
0: और
1: से भी डोनेट
0: हाँ
1: करवा
0: डोनर
1: लेते
0: डोनर
1: हैं
0: कर
1: जी।
0: देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है, पेशेंट को नहीं, पेशेंट को पता नहीं रहता है। ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज़्यादा लीगली होता है। और IUI के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं IUI हुआ तो वो फॉर IVF, IVF के तरफ जब जाते हैं तो IVF क्या होता है, तो IVF में ओम पिकअप करते हैं फीमेल का,
1: वो जो
0: और
1: परेक्टली
0: हाँ सिर
1: बच्चा
0: बीच,
1: है।
0: हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं। और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में ट्रांसफर
1: तो
0: करते
1: इस
0: हैं।
1: पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
0: हाँ पीरियड से सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर,
1: हाँ
0: फर्स्ट तो इंजेक्शंस मेडिसिंस,
1: जी
0: और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्रीबीज अंडा, और फिर बाद में
1: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि क्या प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है। क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, उस समय कैसे फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
0: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है,
1: हाँ,
0: तकलीफ तो होती है उनको, लेकिन
1: एनेस्थीसिया वगैरह देना पड़ता है?
0: एनेस्थीसिया नहीं, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं रहती है। और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
1: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा, कोई रिस्क नहीं होता है?
0: नहीं अभी तो सब लैब टेस्ट टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
1: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है? डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
0: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकेंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन IVF जो फेल हो गया वो लास्ट लास्ट है,
1: जी।
0: लास्ट स्टेप है। IVF फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते।
1: जी। तो PCOD के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
0: हाँ होती है, PCOD में पीरियड से रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है, कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है,
1: जी
0: ये भी होता है।
1: जी तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी
0: हाँ नींद
1: और
0: की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है,
1: जी।
0: हार्मोनल इम्बैलेंस बस।
1: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
0: कम
1: होती
0: हो
1: है,
0: जाती है स्कैंट में,
1: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
0: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मनर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो
1: जी।
0: महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
1: तो
0: जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
1: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
0: इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है
1: क्या कुछ
0: यूटेरस में,
1: खतरा होता है?
0: हाँ यूटेराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, और इसका कैंसर हो सकता है बाद
1: जी।
0: में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा।
1: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे निजात?
0: वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना ये पता नहीं है।
1: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और
0: हाँ
1: कैंसर का डर पैदा होता है, तो
0: डर
1: ऐसा
0: पैदा,
1: कहाँ तक सच्चाई है इसमें?
0: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है,
1: जी
0: कभी कभी ये PCOD की तो सीस्ट पानी जैसे होता है उसका,
1: जी
0: हाँ कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सीस्ट भी होता है,
1: मतलब पानी,
0: सिस्टिक
1: हाँ,
0: होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है
1: यूरिन के रास्ते से सफेद
0: यूरिन
1: पानी
0: के।
1: आता है ऐसा?
0: हाँ वो अलग चीज़ है, यूरिन के रास्ते जो सफेद पानी है तो वाइट डिस्चार्ज।

0: होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है
1: जी। हाँ, तो उसका क्या इलाज है?
0: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है
1: जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये रात भीगी भीगी,
1: ये रात भीगी भीगी, ये मस्त पिज़्ज़ा है, चोरी चोरी फिल्म का गाना।
0: हाँ।
1: है, सुनते हैं ये गाना।

0: पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती है, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर।
0: हाँ।
1: और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं, हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जिसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेजर कर देते मशीन से, हेयर लेजर रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है।
0: जी, जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?
1: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
0: जी, तो इसका इलाज क्या है?
1: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना।
0: डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
1: हाँ, इसका परीक्षण सेल परीक्षण भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल्म ये है इसका थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ट तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए। और महीने में एक बार तो भी सेल परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गठे जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए।

0: और
1: जी।
0: ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
1: और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मेमोग्राफी।
0: मेमोग्राफी कर
1: तो
0: मेमोग्राफी सोनोग्राफी पेनेसी निडल बायोप्सी।
1: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से?
0: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है।
1: और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत
0: मूड
1: होता है,
0: स्विंग्स होते हैं।
1: तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का? कि अचानक किसी महिला को देखा है, अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
0: मेंटल स्ट्रेस,
1: तो इसका
0: बस
1: ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है?
0: उसका डाइट से ही, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया ऐसा है वो। इसका इलाज भी मेडिटेशन ही है, शांत रहना है,
1: जी।
0: एक्सेप्टेंस करना है, और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आना चाहिए।
1: जी
0: अच्छे
1: जी
0: से किताब पढ़ो, अच्छे
1: जी
0: से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे, जो चीज़ तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, जो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है,
1: जी
0: हॉबीज है कुछ, उस पर ध्यान दो।
1: और पीसीओडी की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगी आप हमारे श्रोताओं को?
0: पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से।
1: जी, कुछ संदेश देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को?
0: बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो। जो महिला योगा करती है अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको पीसीओडी, मेनार्क, मेनोपॉज ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है, आराम से हो जाता है सब। और जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन ही रहता है उनका, बाकी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़, तो ये सब जो हमारे स्टेजेस हैं महिला के जीवन में, मेनार्क है, जैसे पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये पीसीओडी आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब
1: जी
0: बाहर
1: जी
0: निकलने के लिए।
1: जी
0: पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है, और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सभी अच्छा होता है।
1: बिल्कुल
0: पॉजिटिव विजुलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक
1: जी।
0: जीवन शैली।
1: डॉक्टर आशालता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक
1: नमस्कार।
0: यू सो मच, थैंक यू मैम।
2: ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे प्रसारण FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ न्यूज़ ऑन IR ऐप पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। हम हाजिर हैं अपने सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा का आरंभ समाचारों के साथ। समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन को एक नए चरण में प्रवेश मिला है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में

0: मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के लिए राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा मोचन बल के साथ स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। खेलों में फीफा फुटबॉल विश्वकप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच।
4: नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में और आज हैं आप शिवलता के साथ। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा निरंतरता से कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास से ही हम किसी काम में निपुण हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में। पर्यावरण बचाओ भविष्य बचाओ का सीधा मतलब होता है हम आज अपनी प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों का कल सुरक्षित है। दोस्तों, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और आवरण, जिसका मतलब होता है हमारे चारों ओर की जगह। इसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल होते हैं। प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए सभी ज़रूरी संसाधन दिए हैं, लेकिन आज इंसान अपनी सुख सुविधाओं के लिए पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो मानव जाति का भविष्य ही समाप्त हो जाएगा। आज हमारा पर्यावरण कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बना रहा है, जिससे सांस संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। सड़कों और इमारतों को बनाने के लिए अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, इससे जंगलों में

रहने वाले जीवों के घर छिन रहे हैं और मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है। प्लास्टिक, कचरा, मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर रहा है। ये सालों तक नष्ट नहीं होता और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। फैक्ट्रियों का गंदा कचरा नदियों में बहाया जा रहा है, जिससे पीने का साफ पानी लगातार कम होता जा रहा है। अगर हम अपने कल को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो हमें आज ही मिलकर छोटे छोटे लेकिन ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे। दोस्तों, पेड़ हमारे पर्यावरण के फेफड़े होते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन के खास मौक़ों पर कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। हमें बाज़ार जाते समय प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े या जूट के थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी की एक एक बूंद कीमती है। ब्रश करते समय या नहाते समय नल को खुला ना छोड़ें। घरों में ज़रूरत ना होने पर बिजली के पंखे और लाइट्स को बंद रखें। इसके साथ ही गीला कचरा और सूखा कचरा हमेशा अलग अलग डस्टबिन में डालें, ताकि वो सही तरीके से रिसाइकल हो सके। दोस्तों, पर्यावरण को बचाना किसी एक व्यक्ति या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी असंभव है। हमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के नियम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। जब धरती हरी भरी और साफ होगी, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम बातें करेंगे और भी, पर उसके पहले हम सुनेंगे ये गीत।

दोस्तों, मोबाइल का सदुपयोग का मतलब ये है कि इस आधुनिक तकनीक का उपयोग अपने विकास, शिक्षा और ज्ञान को बढ़ाने के लिए करना, ना कि सोशल मीडिया और गेमिंग में समय बर्बाद करने के लिए। आज के वैज्ञानिक युग में मोबाइल फोन विज्ञान का एक अद्भुत और चमत्कारी आविष्कार है। आज ये केवल बात करने का साधन नहीं रह गया है, बल्कि हमारे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर के अलार्म के से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी रूप में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल एक ऐसा उपकरण है जिसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं, और ये इसके इस्तेमाल करने वाले के हाथ पर ही निर्भर करता है। अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग करें तो ये हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। मोबाइल का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। छात्र मोबाइल के ज़रिए इंटरनेट से किसी भी विषय की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस, एजुकेशनल ऐप्स और ई बुक्स के माध्यम से घर बैठे पढ़ाई की जा सकती है। मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स की मदद से अब बैंक जाने या लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिजली का बिल, पानी का बिल या रिचार्ज घर बैठे कुछ ही सेकेंड्स में हो जाता है। समाचार ऐप्स और इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में हो रही घटनाओं से तुरंत अपडेटेड रह सकते हैं। कई लोग मोबाइल के ज़रिए अपना बिजनेस चलाते हैं, ग्राहकों को इससे जुड़ते हैं और घर बैठे पैसे कमाते हैं। ऑफिस के ज़रूरी ईमेल्स और फाइल्स भी मोबाइल से आसानी से भेजे जा सकते हैं। दुर्घटना, बीमारी या किसी भी मुसीबत के समय मोबाइल के ज़रिए तुरंत पुलिस, डॉक्टर या परिवार के सदस्यों को मदद के लिए बुलाया जा सकता है। दोस्तों, सदुपयोग को समझने के लिए इसके दुरुपयोग से बचना भी उतना ही ज़रूरी है। घंटों तक सोशल मीडिया पर रील्स देखना या ऑनलाइन गेम खेलने से कीमती समय नष्ट होता है। स्क्रीन को लगातार देखने से आंखें कमज़ोर होती हैं, सिर दर्द हो सकता है और नींद ना आने की समस्या बढ़ जाती है। लोग वास्तविक दुनिया से कटकर आभासी यानी वर्चुअल दुनिया में जीने लगते हैं, जिससे एकाग्रता कम होती है और अकेलापन बढ़ता है। मोबाइल को अपना गुलाम बनाने के बजाय खुद उसका मालिक बनने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे पढ़ाई या काम के समय सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस बंद रखें। रोज़ाना स्क्रीन टाइम तय करें कि कितनी देर मोबाइल देखना है। सोने से कम आधा घंटा पहले मोबाइल को खुद से दूर रखते हैं। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन आज के समय की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये एक बहुत अच्छा सेवक है, लेकिन एक बहुत बुरा मालिक। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर हम मोबाइल का उपयोग अपनी तरक्की, ज्ञान और काम को आसान बनाने के लिए करेंगे, तभी इसकी असली सदुपयोग होगा। तकनीक का इस्तेमाल जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें, ना कि जीवन को बर्बाद करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में बातें यूं ही जारी रहेंगी, पर उसके पहले आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
0: दोस्तों, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ये कहावत हम सब ने बचपन से सुनी है। इसी प्रकार हम ये भी सुनते आए हैं, मेहनत का फल मीठा होता है। ये एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो हमें जीवन में कभी हार ना मानने की प्रेरणा देता है। संसार में कोई भी कीमती चीज़ बिना प्रयास के नहीं मिलती। अगर हम जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उसका केवल एक ही रास्ता है और वो है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत का मतलब सिर्फ शारीरिक श्रम नहीं होता, बल्कि सही दिशा में पूरी लगन और मानसिक एकाग्रता के साथ किया गया प्रयास होता है। जो कि लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उन्हें कभी कुछ हासिल नहीं होता। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करना जानते हैं। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान पुरुष हुए हों, चाहे वे महात्मा गांधी हों, APJ अब्दुल कलाम हों या थॉमस एल्वा एडिसन, इन सभी ने कठिन परिश्रम के बल पर ही इतिहास को रचा है। दोस्तों, मेहनत से मिलने वाली सफलता को मीठा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बिना मेहनत से मिली कोई चीज़ कम मूल्य नहीं होता। लेकिन जब हम रात दिन एक करके कोई लक्ष्य हासिल करते हैं, तो उसकी खुशी और मानसिक संतोष सबसे अलग होता है। शुरुआत में मेहनत का रास्ता कड़वा, थका देने वाला और मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब इसका परिणाम आता है तो वो सारे दुखों और थकान को दूर कर देता है। लगातार मेहनत करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, जिससे वो भविष्य की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम अपने आसपास की प्रकृति को देखें तो हर जीव हमें मेहनत का पाठ पढ़ाता है। एक छोटी सी चींटी को देखिए, वो अपने वजन से कई गुना भारी दाना लेकर दीवार पर भी चढ़ जाती है। 100 बार गिरती है लेकिन हार नहीं मानती। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है। एक किसान चिलचिलाती धूप, कड़ाके की ठंड और भारी बारिश में खेतों में पसीना बहाता है। उसकी महीनों की इसी कड़ी मेहनत का मीठा फल अंत में सुनहरी फसलों के रूप में पूरी दुनिया को मिलता है। दोस्तों, जीवन में शॉर्टकट ढूंढने वाले लोग कभी भी स्थायी सफलता हासिल नहीं कर पाते। हो सकता है कि मेहनत करने के बाद भी कई बार तुरंत परिणाम ना मिले, लेकिन ऐसी स्थिति में निराश होने के बजाय धैर्य रखना चाहिए। देर से ही सही, लेकिन मेहनत का परिणाम हमेशा सकारात्मक और बेहतरीन होता है। इसलिए हमें आलस को छोड़कर निरंतर काम करते रहना चाहिए, क्योंकि

इसी के साथ ही वक्त हो चला है हमारी प्रश्नोत्तरी का। हमारा कल का सवाल था, वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही जवाब है वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।

अभी वह साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

0: पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के लिए।
1: घर आंगन कार्यक्रम में सब श्रोता बहन लोगन का स्वागत बा और हम हैं आपका रेडियो सखी सुषमा
2: और हमरे हम साथ में बाटी रागनी।
1: हाँ बहन रागनी, देखा तुह के नमस्ते बा। देखिए मैं हमन के जौन कार्यक्रम बाना और मैं कुछ ना कुछ विषय पे हमन के चर्चा कर जाला जौन उ दिन खातिर विशेष होला। देखिए बहन, आज हवे 6 जुलाई और प्रति वर्ष हमन के 6 जुलाई के विश्व जूनोसिस दिवस के मनावल जाला। जूनोसिस से तात्पर्य ई बा कि जौन संक्रामक बीमारी हमन के जानवरन से मनुष्यन के फैलेला ओके जूनोसिस कहल जाला। ए दिवस के हमन के ए नाते मनावेली कि ए संक्रामक बीमारियन के खतरा और बचाव से अवगत भइल जा सके। 6 जुलाई 1885 के दिने ही वैज्ञानिक लुई पाश्चर द्वारा रेबीज जो एगो जेनेटिक बीमारी बा के खिलाफ पहला सफल टीकाकरण कैल गेल रहल।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान में ज्ञात सब संक्रामक बीमारियन में से लगभग 60% जेनेटिक बा। एकरे अतिरिक्त उभरत बीमारियन में से 75% जानवरन से ही इंसानन में फैलेला।
1: जूनोटिक बीमारी के संक्रमण संक्रमित जानवर से सीधे संपर्क में अइले से फैलेला, दूषित भोजन या पानी के पीले से, मच्छर या टिक्स के कटले से या पर्यावरण के माध्यम से फैलेला।
2: हाँ, जूनोटिक बीमारियन से बच्चे खातिर कुछ बातन के ध्यान में रखे के चाहिए, जैसे पशुअन के संपर्क में आवे के बाद हाथ साबुन से अच्छी तरह से धुलल जा,

0: मच्छरन से बचाव करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें, मांस के अच्छी तरह से पका कर खाइल जा और पालतू जानवर के नियमित टीकाकरण करावल जा। इस सब बात के ध्यान रखला से हमन जा जेनेटिक बीमारियन से बचल जा सकेला।
1: देखो बहन, इ तरह हमन के चर्चा, अब हमन के कार्यक्रम के आगे बढ़ावा सुनल जाए को जानकारी कि अपन ग्रामीण महिलावन के आर्थिक रूप से कैसे विकास हो सकेला, इस विषय पे जानकारी दी हैं प्रोफेसर सुमित्रा सिंह जी, ताई सुनल जा।
2: एक देश के विकास का आकलन उस देश की जनसंख्या की जीवन गुणवत्ता से होता है। इसमें समाज के कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के जीवन स्तर का मानक यह प्रदर्शित करता है कि समग्र विकास की स्थिति कैसी है और इसमें क्या सुधार किए जाने की आवश्यकता है। भारत के ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाली महिलाओं के सामाजिक उन्नयन के बिना आर्थिक उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती है। सशक्त नारी सशक्त भारत के नारे के साथ आगे बढ़ने की गति को बरकरार रखना और विकास के अगले पायदान की ओर कदम बढ़ाने की राह का सुगम होना इतना आसान भी नहीं है। इसके मूल में परंपरा और संस्कृति के साथ दृष्टिकोण के परिवर्तन की महती भूमिका होती है। आर्थिक गतिविधियों में प्रतिभाग की अनुमति मिलने के उपरांत वास्तविक आर्थिक उन्नति का प्रारंभ होता है अथवा परिस्थिति के विपरीत होने पर इसमें संलग्न होने की प्रवृत्ति मिलती है। आजीविका के लिए कम भुगतान की समस्या या बलात्श्रम की समस्या इस क्षेत्र में अभी भी देखने को मिल जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान करती है, इसलिए भी ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों का आकलन आवश्यक होता है। हालांकि स्वाधीनता के उपरांत महिलाओं की सामाजिक आर्थिक सहभागिता के नवीन आयामों का विस्तार हुआ है और इसमें सुधार के प्रयास निरंतर गतिमान हैं। अनेक अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं जिनमें महिलाओं के क्रियाकलाप उन सामाजिक अभिवृत्तियों एवं संस्थाओं से प्रभावित होते हैं जो किसी विशेष समय और किसी विशेष सामाजिक वैचारिकी से उत्पन्न होते हैं। वर्ष 1980 की पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के विकास को अलग समूह के रूप में मान्यता देकर उन्हें विकास की योजनाओं में उचित स्थान दिया गया। इसमें महिलाओं के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण के स्थान पर उनके विकास तथा अधिक अधिकार देने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य था महिलाओं को सामाजिक आर्थिक विधिक और राजनैतिक स्तर पर पुरुषों के समान स्थान देकर राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्र निर्णयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवारों में आज भी महिलाएं स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती हैं या इसके लिए उनकी भूमिका को न्यूनतम मान लिया जाता है, जो आर्थिक दृष्टि से कदापि उचित नहीं होता है। आर्थिक उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधा को बहुत हद तक समाप्त करने में शिक्षा की महती अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। इसके अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना भी असंभव है। उचित स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत जब पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी सुनिश्चित होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती तो वहीं से आर्थिक विकास की नींव भी पड़ती है। ग्रामीण महिलाओं के लिए असंगठित क्षेत्र में रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। कृषि वानिकी

मत्स्य पालन, पशुपालन, खादी कपड़े, हथकरघा के क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कृषि के क्षेत्र में तो इनकी सहभागिता 50% के लगभग होती है, जिसे आर्थिक आधारों पर प्रायः कम ही आंका जाता है। राज्यों एवं केंद्र सरकार के समन्वित प्रयास से महिलाओं की आर्थिक उन्नति के अनेक कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, जिनमें ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की आर्थिक दशा में निश्चित सुधार होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, महिला सम्मान बचत पत्र, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सामूहिक विवाह योजना, कस्तूरबा विद्यालय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी विविध प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने वाली योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच रखती हैं। इसके अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर, राष्ट्रीय महिला कोष, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आंगनबाड़ी सेवाएं, महिला शक्ति केंद्र, उज्ज्वला योजना इत्यादि ने महिलाओं की दक्षता में वृद्धि की है, जिसने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त जनधन योजना और बीमा सखी योजना भी आर्थिक विकास का आधार बन रही हैं। इस प्रकार विभिन्न योजनाओं में सहभागिता के साथ शिक्षा और कौशलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। शिक्षा प्राप्ति के उपरांत अधिकारों और अवसरों की जानकारी तो होती ही है, साथ में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, हस्तशिल्प और छोटे तकनीकी प्रशिक्षणों द्वारा कौशल विकास से स्वरोजगार के नए द्वार खुलते हैं। थोड़े से प्रशिक्षण और अनुभव के साथ ग्रामीण स्तर पर डेयरी उद्योग में कार्य और छोटे रूप में दुग्ध संग्रहण और विभिन्न उत्पादों का निर्माण करके अच्छा लाभ पाया जा सकता है। इस प्रकार स्वरोजगार का अवसर और उद्यमिता के माध्यम से मिलने वाला प्रोत्साहन परिवार की आय बढ़ाने का साधन बनता है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता और माइक्रो फाइनेंस द्वारा उनको छोटी राशि के ऋण प्रदान करके स्वयं का व्यवसाय या स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने में मदद की जा सकती है। इससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। मांगलिक अवसरों पर अथवा आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण स्तर पर कुछ महिलाओं का समूह रसोई से संबंधित कार्य करने वाले समूह के रूप में चिन्हित हो रहा है, जिससे जुड़ी महिलाओं का आर्थिक उत्थान हो रहा है। जब महिला समूहों के गठन द्वारा ग्रामीण महिलाओं के एक दूसरे से जुड़ने और सहयोग की नवीन पृष्ठभूमि का विकास होता है, तो इससे आर्थिक विकास को पुनः बढ़ावा मिलता है, जिससे परस्पर समर्थन और सहकारिता की भावना का विकास होता है और आर्थिक रूप से ऐसा क्रियाकलाप मजबूती प्रदान करता है। परस्पर बातचीत से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की रणनीति आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। बातचीत से और विभिन्न कार्यों से प्राप्त अनुभव महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से जागरूक और सूचनात्मक दृष्टि से उन्नत बनाते हैं। निजी स्तर पर महिलाओं द्वारा अपने घर पर स्वदेशी तकनीकों से विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार करना, घरेलू उपयोग की सामग्री तैयार करना और इनके विक्रय हेतु ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग करना भी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला कदम हो सकता है। समूह की कुछ अधिक शिक्षित महिलाएं इस कार्य में आगे बढ़कर पूरे समूह को आर्थिक रूप से उन्नत बना सकती हैं। यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक विकास सुनिश्चित

0: करने के लिए सार्थक पहल और आय बढ़ाने की विभिन्न रणनीतियों पर कार्य करना आवश्यक होता है। सामाजिक सहयोग और प्रोत्साहन के साथ कार्यस्थल पर शोषण रहित मानसिकता सुरक्षा तो प्रदान करती ही है, साथ ही उत्साह में वृद्धि करती है, जो भविष्य में आय प्राप्ति के और अधिक प्रयासों को प्रोत्साहित कर सकता है और इससे ये अपने परिवार तथा समुदाय के लिए और अधिक योगदान कर सकती हैं। इस प्रकार की कुछ पहल ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक विकास यात्रा को निरंतरता प्रदान कर सकने में सक्षम है।
1: भाई सब सुनत रही ये जानकारी ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास कैसे हो ये विषय पे जानकारी देते रही प्रोफेसर सुमित्रा सिंह जी, तो इनकी दहल जात धन्यवाद। और यही के साथ ही कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ, सुनल जाएगा संदेश।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
4: सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: सभी अभी संदेश सुन लें और अपने बैठकी में मन मन साइन करें खातिर सुनल जाएगा लोकगीत।

0: बहिन सबे गीत सुनली मन मन साइन भइल। और देखा बहिन लोगन, आज जौन है 6 जुलाई हवे और आजू के दिने जौन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती हवे। और ई एगो महान शिक्षाविद, विचारक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहले। और जौन है इनकर जन्म जौन है 6 जुलाई 1901 में कोलकाता में भइल रहे।
1: तो इनके जयंती पे हमन के कइल जाए नमन और यही के साथ अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ। सुन लेल जाए एगो और गीत।
2: किसान भाई खेत

वहीं सब अबले सुनतली किरण पांडे जी के आवाज में ई गीत और यही के साथ हमन के कार्यक्रम हो रहा बा समाप्त है। हमन के दी आज्ञा बहिन लोअन नमस्ते।

सौ किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे प्रसारण एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित क्षेत्रीय समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ है हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में भइल कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़ल कई गो महत्वपूर्ण फैसला लेल गईल। एगो रिपोर्ट।
1: आज हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस सुविधा का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गोरखपुर और मुरादाबाद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 100-100 बेड के चिकित्सालय की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन डायरेक्टोरेट की स्थापना और डेटा सेंटर नीति को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन को मंजूरी दी गई है। बैठक में शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: पूरा देश आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हो। इस मौका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देत उन्हें साहस, राष्ट्रवाद आ निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बतौले हमें। श्री मोदी एगो आलेख में कहने कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत बदे उनकर अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौका पर आज लखनऊ में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने। इस मौका पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मुखर्जी के व्यक्तित्व आकृतित्व पर रोशनी डाल रहे हैं।
2: भारत माता के महान सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और उद्योग मंत्री, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज 125वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत की इस स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
0: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती के मौका पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई को कार्यक्रमन को आयोजन कैल जा रहल बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर योगी की पाती साझा कैले। एक जरिए मुख्यमंत्री लैका ना नौजवानन से खेलिन के अपने दिनचर्या का अभिन्न अंग बनौले का अपील कैले हमें।
3: मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान एवं सुरक्षित भविष्य के लिए सरकारी नौकरी प्रदान कर रही है। श्री योगी ने कहा कि आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, ब्लॉक में मिनी स्टेडियम तथा प्रत्येक जनपद में आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तैयार है। उन्होंने अभिभावकों से विशेष आग्रह किया है कि बच्चों की खेल प्रतिभाओं को कभी दबाए नहीं। खेल केवल पदक नहीं दिलाता अपितु नशे जैसी बुराइयों से बच्चों और युवाओं को दूर रखने के लिए एक सबसे सशक्त ढाल बनता है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट साफ कहले हो कि सोना का परत वाली रामचरितमानस श्री राम मंदिर में पुरहर तरीका से सुरक्षित बा। ट्रस्ट सोना का परत वाली रामचरितमानस का एगो फोटो जारी कहले बा। ई फोटो एकरे गायब भैले के लेके उठल सवालन के बीच आयल हो। सरकार

0: कहले हवे कि 104 करोड़ से बेसी स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से बेसी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़ल गईल बा। आभा आधार कार्ड के तरियन 14 अंकन क विशिष्ट पहचान संख्या हो, जौन एगो मनई के पुरहर स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ेले। एगो रिपोर्ट।
1: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 का आवेदन फीस वापसी बदे बैंक खाता विवरण अपडेट कैले क आखिरी तारीख बढ़ा के 7 जुलाई कह दिले हो। समाचार पूरा भेल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक रिपोर्ट।
2: आज हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस सुविधा का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गोरखपुर और मुरादाबाद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 100-100 बेड के चिकित्सालय की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।
3: कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन डायरेक्टोरेट की स्थापना और डेटा सेंटर नीति को भी स्वीकृति दी गई।
2: कैबिनेट ने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन को मंजूरी दी गई है। बैठक में शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आज लखनऊ में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला।
4: भारत माता के महान सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और उद्योग मंत्री, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज 125वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत की इस स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
0: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर योगी की पाती साझा की। इसके जरिए मुख्यमंत्री ने बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने की अपील की है।
5: मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान एवं सुरक्षित भविष्य के लिए सरकारी नौकरी प्रदान कर रही है। श्री योगी ने कहा कि आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, ब्लॉक में मिनी स्टेडियम तथा प्रत्येक जनपद में आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तैयार है। उन्होंने अभिभावकों से विशेष आग्रह किया है कि बच्चों की खेल प्रतिभाओं को कभी दबाएं नहीं। खेल केवल पदक तक नहीं दिलाता अपितु नशे जैसी बुराइयों से बच्चों और युवाओं को दूर रखने के लिए एक सबसे सशक्त ढाल बनता है। समाचार

0: कक्ष से विवेक सिंह।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि सोने की परत वाली रामचरितमानस श्री राम मंदिर में पूरी तरह सुरक्षित है। ट्रस्ट ने सोने की परत वाली रामचरितमानस की एक तस्वीर जारी की है। यह तस्वीर इसके गायब होने को लेकर उठे सवालों के बीच आई है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा FM 14.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बारी बस कुछ ही पलों में।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी पसंद, आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी, क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।
4: पंचो जय जवान जय किसान। हाँ भाई, यही नारा के साथ हमन के बैठ की शुरू भइल। और किसान भाई जौन बा अपने रेडियो सेट के लगे आके बैठ गए हुई हैं कि अपने खेती बाड़ी कार्यक्रम में कुछ ना कुछ जानकारी वाली बात जाने के मिलवे करी। साथे साथे हमन के कार्यक्रम में जौन बा ना मनोरंजन का भी समावेश होला, तो अपन किसान भाई लोगन का पूरा जौन बा मनोरंजन भी होला। देखो बहन, कार्यक्रम के शुरुआत में हमन के कोनो न कोनो विषय पे जौन बा चर्चा कइल जाला। आज हमन के चर्चा के विषय बा कि मोटे अनाजों की खेती से अपने किसान सब लोग भाई लोगन के कौन कौन लाभ बा, वो विषय पे चर्चा कइल जाए।
5: कहले के मतलब ये बा कि पहले के जौन समय रहल है उनमें मोटे अनाज का जौन है प्रयोग कइल ज़्यादा होत रहल है और उसे जो लोग निरोग भी रहना। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी बढ़ल, आबादी बढ़ल, तो हम जाके जौन उत्पादन है महीन अनाज का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करे लगली। पहले जौन है लोग ज्वार बाजरे का और जौ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में करत रहना है।

0: जेमे पर्याप्त मात्रा में फाइबर मिलत रहला है। लेकिन अब धीरे धीरे जौन है जौन हमन जा अनाज चावल भी खाते हैं वो जौन है हाइब्रिड हवा ओकर से जौन नुकसान हमन जा के स्वास्थ्य संबंधी हो रहा बा तो फिर जौन है अमन जा पीछे की तरफ जा रहा बाटी ए समय फिर जोर दिहल जा रहा बा कि मोटे अनाज का प्रयोग हमन जा
1: हाँ बहन अब हमन के फिर ध्यान आकृष्ट भइल बा कि हमन के मोटे अनाज का उत्पादन कइल जा जौन की अपने शरीर पे तो फायदा करबे करी साथे साथे जौन बाना एकर उत्पादन कइले में जौन लागत लगेला ना वो भी कम मात्रा में लगेला। कम उपजाऊ भूमि में कम पानी में एकर अच्छी प्रकार से हमन के पैदावार प्राप्त कर सकेली जौन की शरीरी खातिर बहुत ही उपयोगी बा जौन मोटा अनाज बना ए समय हमन के जागरूक बाटी कि हमन के शरीर खातिर बहुत फायदेमंद बा ते एकर उत्पादन कई के अपन किसान भाई लोग जौन बा अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेला।
0: और तो और मार्केट में जौन एकर दाम बा सबसे ज़्यादा भी बा और कीमती जौन में मिल ओकर कीमत ज़्यादा है जिसे किसान भाई लोगों के आर्थिक लाभ है। और चूंकि ये अनाज जौन है एकर पैदावार भी अधिक होला और एमे लागत किसान भाई लोगन के कम से कम लगावे के पड़ेला कम उर्वरक का प्रयोग करे के पड़ेला कम सिंचे पानी के जरूरत पड़ेला तो एकर और सरकार भी हम जोर दे रहल बा कि सब किसान भाई लोग मोटे अनाज का प्रयोग करें और साथ साथ अपने भोजन में भी एकर उपयोग करें ताकि स्वास्थ्य पर कोनो दुष्प्रभाव ना पड़े।
1: देखो बहन मोटे अनाज का शरीर पे जितना फायदा बा ना उतना अपने भूमि के उर्वरा शक्ति के बढ़ेला में भी फायदा बा ए नाते भी अपन किसान भाई लोग मोटे अनाज का उत्पादन करके अपन लोगन के स्वास्थ्य तो ठीक कैले सकेले साथे साथे अपने मृदा के जौन स्वास्थ्य बा ना ओहू के भी बेहतर बना सकेले तो ए बाती के किसान भाई लोग तो जनते बाटे हमन के छोट छोट लेकिन मोट बाती के अपने किसान भाई लोगन से कैल जाला जैसे उन लोगन के भुलाइल बिसरल जौन ये बात बा याद आ जाए तो अब अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ल जाए और अपने किसान भाई लोगों की सुनवा दल जाए एगो जानकारी फूल गोभी की अगेती प्रजातियों की नर्सरी कैसे डालल जा ये पे जानकारी दी हैं डॉक्टर एसपी सिंह जी और उनसे बात करत हम विनय कुमार तक आए सुनल जा।
2: सब्जी के खेती तब्बे फायदेमंद हो सकेले जब आप लोग एकर अगेती खेती करब संरक्षित खेती करब आज सबसे पहले बाजार में आपका उत्पाद आई काहे कि नया नया सब्जी नया नया स्वाद और खरीदे वाला कभी मन ललचे लगेला। ए समय फूल गोभी का कौन कौन प्रजाति है जेकर नर्सरी डाल के आ अगेती खेती कई जा सकेला एकरे बारे में जानकारी देवे खातिर आज फोन लाइन से जुड़ल है डॉक्टर एसपी सिंह वरिष्ठ उद्यान वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार जनपद गोरखपुर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका हमारे यहाँ कार्यक्रम में स्वागत बा।
3: धन्यवाद।
2: फूल गोभी के अगेती नर्सरी कैसे डाले के चाहिए?
3: किसान भाइयों देखें अभी जो आपकी अगेती फूल गोभी की नर्सरी आपको करनी है तो आप मध्य जुलाई तक आप उसकी नर्सरी डाल सकते हैं और उसके लिए थोड़ा सावधानी ये देना है क्योंकि ये बरसात का सीजन है तो जहां पर भी आप नर्सरी डालें थोड़ा देखें ऊंची जमीन होनी चाहिए वहां पर जल भराव की समस्या ना आती हो और ऊंची जमीन अगर मान ली नहीं है तो उसको थोड़ा ऊंची बनाइए कम से कम 15-20 सेंटीमीटर ऊंचा बना करके बेड बनाइए 3 मीटर लंबी या लंबाई आप बढ़ा भी सकते हैं और चौड़ाई 1 मीटर आप रखिए और उसमें आप लोटनल की व्यवस्था अवश्य रखिए। लोटनल आप अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आपको बता देते हैं आपको ये करना है आप बांस ले सकते हैं या पतला तार ले सकते हैं लोहे का और उसमें ऐसा रहे कि मुड़े नहीं बहुत ज्यादा लचीला ना रहे और जैसे आप उसका धनुषनुमा मोड़ करके और जो क्यारी आपकी 1 मीटर चौड़ाई की है चौड़ाई में ही उसको धनुषनुमा मोड़ करके उसको गाड़ा जाता है। ध्यान ये रखना है इतना लंबा तार या बांस लेना है कि उसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर के आसपास हो जाए। तो इस तरह से अगर मान लीजिए 3 मीटर की आप बेड बनाते हैं तो उसमें आप 3 जगह अगर उसको बांस को लगा देंगे और ऊपर से आप जाली आती है मच्छरदानी समझिए मच्छरदानी ले सकते हैं नाइलॉन वाली सूती मत लीजिएगा और वो पॉलीथीन आप रखिए आप हमेशा तैयार रखिए और उसके आपको करना क्या है कि जैसे जो प्रजाति है हमारी अगेती फूल गोभी की उसमें काशी गोभी 25 सबौर अग्रिम और पूसा कार्तिकी ये प्रजातियां हैं जो हमारी अगेती फूल गोभी में हम इसको ले सकते हैं। जहां तक आपको नर्सरी डालने की जरूरत है उसमें आप देखें कि अगर हम 1 एकड़ की हम बात करते हैं तो 1 एकड़ के लिए 300 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है और इसको अगर कम पैमाने पे कर सकते हैं उसी अनुसार इसकी मात्रा निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे हम नर्सरी डालते हैं तो बहुत से किसान हमारी नर्सरी बहुत घनी कर देते हैं तो उसमें फिर पौधा हमारा कमजोर होता है तो इसके लिए इस तरह से व्यवस्था रखें कि मान लीजिए आपको 1 एकड़ में पौधे की रोपाई करनी है तो आप 3 × 1 मीटर की 10 क्यारियां बनाइए और उन 10 क्यारियों में जो आपका 300 ग्राम बीज है तो एक क्यारी में आपका 30 ग्राम बीज

0: गया। तो 30 ग्राम बीज आप मान के चलिए 3 गुणा 1 मीटर की जो क्यारी बेड बनाएंगे उसमें आप लाइन से अच्छी प्रकार से आप बुआई करेंगे तो पर्याप्त दूरी रहेगी और पौधा आपका स्वस्थ तैयार होगा। और ध्यान ये रखें जब आप बुआई कर देते हैं तो बुआई के बाद ही जो आपको लोटनला हम बताए थे तार या बांस उस तरह का ढांचा तैयार करके और उसके ऊपर आप जाली डाल दीजिए। ये आप जाली हमेशा पड़ी रहनी चाहिए और जब आपको लगता है कि बारिश का सीजन आ रहा है, बारिश होने वाली है, तब आप उसमें पॉलीथिन डाल दीजिए। जैसे ही बारिश का मौसम हट जाता है, धूप निकलती है, तो उसके बाद जो आपकी नेट डाले हुए हैं, जो मच्छरदानी आप लगाए थे उसके ऊपर, उसको लगा रहने दीजिए और उसके बाद पॉलीथिन केवल उठाना है। थोड़ा सा तैयारी करते समय एक बात का और ध्यान रखिए, जो आप बेड बनाएंगे 3 गुणा 1 मीटर की जो क्यारी है उसमें करीब 7-8 किलो सड़ी गोबर की खाद होनी चाहिए, कच्चा ना रहे, और उसको आप मिला करके मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप डालते हैं तो करीब 20-25 ग्राम आप DAP केवल उसमें मिट्टी में मिला सकते हैं, नहीं तो आप केवल सड़ी गोबर की खाद है, बर्मी खाद है, नाडेप खाद है, केवल इसको डाल करके आप उसकी तैयारी कर लीजिए। तो देखेंगे ये आपकी 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी लगभग तैयार हो जाती है। और बीच में कभी कभी थोड़ा सा समस्या आती है, कभी मान लीजिए बारिश का पानी चला जाता है या कभी आप देखिए कि आपके पूरा ढक करके रखते हैं तो थोड़ा सा एक आध पौधे में पदगलन की समस्या आ सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। पदगलन आप सब जानते होंगे किसान भाई कि जो भी पौधा रहता है मिट्टी की सतह से ही, वो जमीन की सतह से ही पौधा गल करके टूट करके गिर जाता है, तो उससे बचाव के लिए आप कार्बंडाजिम दवा ले लें, ये बाजारों में उपलब्ध रहती है। तो कार्बंडाजिम का 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके और उसका जैसे सिंचाई, जैसे हो सकता है कि बारिश नहीं हो रही है तो बीच में जैसे ही जमीन सूखती है तो आपको बाहर से सिंचाई करनी पड़ेगी, हजारे से जब सिंचाई करेंगे तो उसी हजारे में ये कार्बंडाजिम दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके और उसी से आप उसकी सिंचाई कर दीजिए। ये मान के चलिए जो मिट्टी आपकी गीली हो जाएगी तो ये पद गलन रोग की समस्या से आपका बचाव हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है कि अगर आप ने इस पे ध्यान नहीं दिया, दवा का छिड़काव नहीं किया तो ये बहुत जल्दी पूरी पौध को नष्ट कर देगी। सभी आपके जो फूलगोभी के पौधे तैयार हो रहे हैं वो सभी गल करके खत्म हो जाएंगे, तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इस पे आपका पदगलन रोग नहीं लगने देना है। और आपको इसको ढक के रखिए, निश्चित रूप से आपकी अच्छी पौध तैयार होगी। कोशिश करें जब भी आपकी पौध तैयार हो जाती है तो जब रोपाई करने वाले होते हैं तो घर पे एक घोल तैयार कर सकते हैं और उस घोल में आप उस पौध को अगर डुबो करके उसका शोधन करके आप उसकी रोपाई करेंगे तो बहुत अच्छी मतलब जल्दी इसका विकास होगा, क्योंकि ये जो भी आपकी प्रजातियां बताई अभी अगेती फूल गोभी की, जो काशी गोभी 25 है, सबौर अग्रिम है या आप पूसा कार्तिकी है, ये आपकी 65-70 दिन में आपकी ये आपकी फूल गोभी बाजार में आ जाती है रोपाई के बाद से।
1: डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो
0: जी
1: ये तीनों प्रजात बताओ थे अगेती फूल गोभी का, इनका
0: जी
1: विशेषता का है, फूल कैसन हुई, कितना दिन में हुई, एकर वजन कैसन हुई और गर्मी बरसात के सहे खातिर एकर अंदर क्षमता कैसे बा।
0: हाँ देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि ये प्रजातियां हैं, प्रजातियां क्लाइमेट के अनुसार बनाई जाती हैं। कुछ प्रजातियां अगेती होती हैं, कुछ मध्यम होती हैं, कुछ पछेती होती हैं। तो जो अगेती जो प्रजातियां हैं इनमें देखते हैं कि अभी हमारा भले ही बारिश का सीजन है लेकिन फिर भी टेम्परेचर, हमारा जो तापमान है वो ज्यादा रहता है, तो इन गोभियों में ज्यादा तापमान सहने की शक्ति होती है और ये कम समय में तैयार हो जाती है। आपका देखेंगे 60-65 दिन में आपकी ये फूल गोभी बाजार में आ जाएगी। थोड़ा सा एक दिक्कत होती है कि इसमें प्रोडक्शन आप चाहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल पाता, उत्पादन उतना नहीं देती, क्योंकि इनका फूल आपका 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो के आसपास तक इनका वो फूल बनता है। लेकिन आप ये मान के चलिए जब ये मार्केट में जाएगा आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मार्केट में आ जाएगी आपकी, क्योंकि अभी मान लीजिए जुलाई में आपने नर्सरी तैयार की, अगस्त में आप इसकी रोपाई करेंगे, अगस्त का महीना और सितंबर का महीना, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी ये गोभी बाजार में आती है और उस समय आप देखते होंगे खरीदते हैं बाजार में जो ठेले पे बेचते हैं 80 रुपया 100 रुपया किलो के हिसाब से बेचते हैं, अगर मान लीजिए आप थोक में भी आप बाजार में मंडी में बेचते हैं तब भी 60 रुपया किलो के हिसाब से आपकी ये फूलगोभी कभी कम नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों को उत्पादन भले ही कम मिले लेकिन उसकी मूल्य इतना ज्यादा मिलेगा कि आपको उत्पादन की भरपाई उससे मूल्य से हो जाएगी, बहुत अच्छा लाभ उससे होगा।
1: डॉक्टर SP सिंह आप इतना अच्छा जानकारी देली कि फूल गोभी के अगेती नर्सरी कैसे डालल जा, नर्सरी डालत समय सावधानी का बरते के चाही, आप बढ़िया बढ़िया प्रजात कौन है, इतना बढ़िया जानकारी देवे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंच सभी सुनत रही जानकारी फूल गोभी की अगेती प्रजातियों की नर्सरी जे पे जानकारी देते हैं डॉक्टर SP सिंह जी और बात करते रहे हैं विनय कुमार। एक साथ अपनी बैठकी के आगे बढ़ावल जा और अपने पंच सभी के सुनवा दल जाएगो गीत।
3: उपभोक्ता

0: श्रोताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
3: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
4: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
3: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
4: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
3: गाने के बोल,
4: गीतकार
3: और संगीतकार,
4: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
3: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
4: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
3: गाते गुनगुनाते
4: सुनिए सुबह 10:05 पर।
3: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: पंच पे सुनत रहनी ओम प्रकाश सिंह जी के आवाज में ये निर्गुण गीत। और यही के साथ है अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जा। और कार्यक्रम में मौजूद बा एगो और बातचीत बाजरा की उन असील प्रजातियों की खेती जे पे जानकारी दी है डॉक्टर रवि प्रकाश मौर्य जी। और बात करत हम विनय कुमार दाई सुन।
1: किसान भाई धीरे धीरे मोटे अनाज का महत्व बढ़त जात बा, बाजार में एकर मांग भी बा, और तो और उत्तम स्वास्थ्य के लिए आज कई जरूरत भी बन चुकल बा। यह कारण है कि बड़े बड़े दुकान पर जे पैसा वाला बा उहे एकर सेवन कर पावता। हमहन के अगर उचित सलाह मिल जाए, वैज्ञानिक जानकारी मिल जाए, तो बाजरा का हमहन के खेती कैल जा सकेला। आज अपने साथ फोन लाइन से जुड़ल है डॉक्टर रवि प्रकाश मौर्य, पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। बाजरा का कौन कौन ऐसा प्रजाति है जौन लगावल जा सकेली, उनका विशेषता का है?
2: बाजरा में जो क्षेत्र के हिसाब से प्रजातियां हैं, तो अपने पूर्वांचल के लिए विशेष करके जो संकुल प्रजाति है ICBM 155, WCC 75 और नरेंद्र चारा बाजरा 3 है। ये सब प्रजातियां जो है 80 से 100 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। इनकी ऊंचाई 200 से 250 सेंटीमीटर तक होता है और दाना जो है 18 से 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। और सूखा जो चारा है 70-80 कुंटल प्रति हेक्टेयर में इसे मिल जाता है। उसी तरह से और भी प्रजातियां हैं, जैसे संकर प्रजाति है पूसा 322, पूसा 23, ICMH जिसको कावेरी भी कहते हैं 451, ये 75-80 दिन में पक के तैयार हो जाती है और 150 से 210 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और दाना जो है इसे 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है और सूखा चारा 40 से 50 कुंटल इसे प्राप्त हो जाता है।
1: अपने यहाँ बाजरा की खेती दोनों काम खातिर कैल जाला, चारा वाली अलग प्रजाति होली आ अनाज उत्पन्न करे वाली अलग प्रजाति होली?
2: जी,
1: कुल प्रजाति अनाज उत्पन्न कर यहाँ जौना के लोग भोजन के रूप में प्रयोग कर सकेला, आ सूखल ओकर डंठल जेके कड़वी लोग कहेला सुखा के गट्ठर बांध के रखावेला आ ओकर उपयोग चारा के रूप में कई सकेला।
2: जी,
1: बाजरा के बुआई का बढ़िया समय का है आ कौना तरह से एकर बिजाई करे के चाहिए?
2: बाजरे के बुआई जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक, यानी 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक बुआई किया जा सकता है। और कोशिश करना चाहिए कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी बुआई हो और 4 सेंटीमीटर से गहरा ना हो। और कूड़ में लाइन में अगर बुआई किया जाए तो सबसे अच्छा है। और प्रति हेक्टेयर में 4 से 5 किलोग्राम बाजरा का बीज लगता है।
1: लाइन से लाइन का दूरी 50 सेंटीमीटर होके चाहिए?
2: जी,
1: और 4 सेंटीमीटर से नीचे ना होके चाहिए एकर बीज?
2: जी,
1: एकर बीज शोधन कैला से का उत्पादन पर प्रभाव पड़ेला?
2: जी, अगर देखिए, अगर कहीं सरकारी फर्म से बीज को क्रय किसान भाई अगर करते हैं तो उपचारित रहता है, लेकिन अगर कहीं प्राइवेट से करते हैं या क्रय करते हैं या ऐसे बीज कहीं लगाते हैं तो उसको शोधित करना बहुत आवश्यक है। तो 1 किलोग्राम अगर बीज है 2.5 ग्राम थीरम, 1 किलो बीज 2.5 ग्राम थीरम से मिला करके शोधित कर देना चाहिए। इससे जो बाजरा में एक अर्गट रोग होता है, इससे

0: ले सकते हैं। जैसे अरहर में मान लीजिए उकठा बीमारी लग जाती है, तो अगर बाजरा ज्वार उसमें बुआई करते हैं तो उस बीमारी का प्रकोप कम होता है उकठा का, क्योंकि इसके जड़ में कुछ ऐसे द्रव होते हैं जो उकठा की बीमारी की जो फंगस है उसको मार देते हैं, तो इसलिए इसके साथ संतुष्ट की गई है और ऐसा बुआई कर सकते हैं किसान भाई।
1: अक्सर ही देखल जाला कि जौन नदी का किनारा बा और ऊंची जमीन बा, रेतीली जमीन बा या कहीं ऊंचास वाली बा, भट्टा का जमीन, लोग एकर खेती करेला आ एक बार बुआई कैला के बाद एके वैसे छोड़ देला, तो का एमें सही उर्वरक खाद का भी जरूरत पड़ेला या जौन माटी के अंदर पोषक तत्व तो बा वही पर हमन के निर्भर रहे के चाहिए।
0: नदी के किनारे क्योंकि जब बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी निकल जाता है तो उपजाऊ जमीन हो जाती है, तो वहां तो जहां पर पानी लगता है और ज्वार बाजरा जब खाली खेत में करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, और मृदा परीक्षण का जो परिणाम अगर है तो उसके हिसाब से उर्वरक देना चाहिए। वैसे सामान्य रूप से 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश ये संतुत है बाजरा की खेती के लिए। तो इसमें कोशिश ये करना चाहिए कि बुआई से पहले सभी खाद को उसमें खेत में मिला दें, उसके बाद से बाजरा की बुआई करनी चाहिए।
1: बाजरा का जौन व्यावसायिक महत्व बाटे, इससे कौन
0: जी
1: कौन चीज बनावल जाला ताकि किसान भाई लोगन का वह तरफ ध्यान जाओ आ मोट अनाज से बल्कि कीमती अनाज में बदल जाओ और आज के जरूरत के पूरा कर सके।
0: बाजरा के लिए एक तो ज्यादातर रोटी लोग बनाते हैं बाजरा के, उसको लावा भी लोग भूनते हैं, खिचड़ी के समय में लइया भी बना करके लोग उसमें गुड़ डाल के खाते हैं, और भी बहुत सा उपयोग है। इससे कंपनियां भी तमाम चीजें ऐसी बनाती हैं, और बाजरा स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है क्योंकि मोटा अनाज पर सरकार बल भी दे रही है, 2023 मोटा अनाज के रूप में घोषित भी किया गया है, तो किसान भाई अगर इसकी खेती करें तो बहुत ही लाभकारी है, अपने तो खाएंगे ही दूसरे को भी खिलाएंगे, इसका विक्रय भी करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा।
1: आपके कृषि विश्वविद्यालय का मोटा अनाज या यह तरह का जो छोटा अनाज वाना ओकरे विकास खातिर कौन तरह से काम होता, चाहे बीया उपलब्ध करावला का चाहे शोध कैला का।
0: कृषि विश्वविद्यालय अभी इस पर ज्यादा तो काम नहीं किया है, लेकिन अब सरकार की मंशा है तो उसके अनुसार इस पर विशेष काम करने की योजना बन रही है। जैसे जैविक खेती की बात हो रही है, ये मोटे अनाज की खेती की बात हो रही है, तो इस पर ये प्रोजेक्ट बना करके लोग सबमिट कर रहे हैं और इस पर काम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत ही आवश्यक है कार्य करना।
1: डॉक्टर रवि प्रकाश मौर्य जी, आप इतना अच्छा जानकारी दिए कि बाजरा के खेती बदलत परिस्थिति में केंग करे के चाहिए, अधिक उत्पादन लेवे खातिर अच्छी प्रजात कौन कौन है, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: पंचवे सुनत रहनी जानकारी बाजरा की उन्नतशील प्रजातियों की खेती जे पर जानकारी देता ना डॉक्टर रवि प्रकाश मौर्य, उनसे बातचीत कर रहा विनय कुमार, तो इतना निमन जानकारी देवे खातिर इनके दिया जाए धन्यवाद।
3: और देखी पंचवे, ये समय बरखा बुन्नी के समय बात है, ये समय हमन के जौन खेत बाओ में धान तो लगले बा, लेकिन जौन किसान भाई लोन का खेत पलिहर बा उ लोग जौन बा अपने खेत के जुताई कह दे, जिससे जौन बरखा बुन्नी का प्राकृतिक जल बा वो भूमिगत हो जा, वो अपने भूमि खातिर तो बढ़िया रहबा करी, साथे साथे जौन जल भूमिगत हो जाए वो भविष्य में भी हमन के काम आए। तो ये सब छोट छोट बातें के अगर हमन के ध्यान रखे लेना तो बहुत उपयोगी हो जाला। और
2: और तो
3: यही के
2: और
3: साथे जौन बा अपने कार्यक्रम के समय भी हो रहल बा समाप्त, तो हमन के कार्यक्रम में आप लोगों से चाहत हैं आज्ञा लेवल, पंचों जय
2: जय जवान
3: जवान जय
2: जय
3: किसान।
2: किसान।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 870-001-4242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
5: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
6: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
7: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
6: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
7: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
6: गाने के बोल,
7: गीतकार
6: और संगीतकार,
7: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
6: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
7: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
6: गाते गुनगुनाते
7: सुनिए सुबह 10:05 पर।
6: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।
3: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा एसटीडी नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: लोग धर्म में लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com.
4: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के लिए।
0: लोकधारा में आज के कलाकार हैं शारदा सिन्हा।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज की कलाकार थी शारदा सिन्हा। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी कार्यक्रम देश हमार। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं भोजपुरी वार्ता, भारतीय संस्कृति का विशेषता। वार्ताकार हैं रामकिशोर यादव।
1: भारतीय संस्कृति अपने में कई विशेषता समेट ले बा। ए में प्रेम, करुणा, दया, वात्सल्य सब भाव समाहित बा। यही के साथ प्रत्येक जीव में ईश्वर के अंश की उपस्थिति भी मानल जाला। माता पिता, बड़े बुजुर्ग, गुरुजनों के प्रति आदर भाव रहेला। विभिन्न प्रकार के ऋण भारतीय जीवन संस्कृति में विद्यमान बा। दैव ऋण, पितृ ऋण आदि। भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता के भाव हमेशा दिखेला। प्रकृति के अन्न जल से हमन के शरीर ऊर्जा पावेला। सूर्य के दृष्टि से, प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि गतिमान बा। वायु, वर्षा सब प्रकृति के अंग हवे। यही से हमन के संस्कृति में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के भाव रहेला। परिवार और समाज में मनुष्य के विकास होला। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन क्रम के क्रमशः चार भागों में बाँटल गई बा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास। प्रथम अवस्था में व्यक्ति के पठन पाठन के प्रमुख स्थान रहल। जब उ प्रारंभिक जीवन के अपनी असीम ऊर्जा के उपयोग अध्ययन, मनन और संस्कार प्राप्त में करत रहल। द्वितीय भाग में गृहस्थ में मनई विवाहित जीवन में प्रवेश कई के परिवार निर्माण और संतानों के लालन पालन और विभिन्न गृहस्थ धर्म के पालन करत रहल। चौथी अवस्था में वो स्वयं के परमार्थ मार्ग में लगाकर ईश्वर भक्ति में लग जात रहल। भारतीय संस्कृति न केवल लौकिक जीवन के दर्शन करावत रहल बल्कि आदमी के आध्यात्मिक उन्नति पर भी बल देत रहल। ऐसने में व्यक्ति सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा से पहचानल गए, जिसके विकास की प्रक्रिया जन्म जन्मांतर तक चलत रहल। हमन के देश कई बरस तक गुलाम रहल। गुलामी व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव डाले ले। व्यक्तित्व में, मानसिकता में, मनोस्थिति में सब में गुलामी के प्रभाव दिखेला। गुलामी धीरे धीरे मनई के मानसिक रूप से कमजोर कई देवे ले, जेकरे प्रभाव कई पीढ़ी तक दृष्टगोचर होते दिखेला। गुलामी के प्रभाव व्यक्ति के भाषा, विचार, रहन सहन सब पर पड़ेला। शासक वर्ग की संस्कृति, सभ्यता गुलाम वर्ग के प्रभाव पूर्ण लगे ले। भारत में भी धीरे धीरे प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति पर प्रभाव पड़े लागल। अपने देश की बुनियाद में जहाँ त्याग, तप, दया, संतोष, दान, शांति, सेवा, समर्पण, सदाचार के महत्वपूर्ण स्थान रहल, वहीं एकर जगह अब भौतिकवाद और भोगवाद ले लेलस। भाषा पर भी एकर प्रभाव पड़ल। देववाड़ी संस्कृत और हिंदी पर एकर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ल। संस्कृत भाषा के माध्यम से शिक्षा खाली गुरुकुल विद्यालय में रहल गई। हिंदी माध्यम से शिक्षा के महत्व कम हो गई। अंग्रेजी के जगह जगह प्रयोग आम बोलचाल में होए लागल। धीरे धीरे ये शिक्षा के माध्यम बन गई। हमन के अपने सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के यह समय जब ओकर महत्व पूरी दुनिया के समझ में आवल बा, तब हमन के ओसे दूरी बनावत हैं। आज हमन के पश्चिम सभ्यता से प्रभावित होके अपने प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के अनदेखी करत रहें। भौतिकवाद ओ पर भी हावी बा, जेमें जीवन के चरम लक्ष्य खाली सुख के उपयोग ही बा। ओकरे बाद भी आज मनई अशांत और दुखी बा। अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कैले के बाद भी मनुष्य अपने वर्तमान से असंतुष्ट बा। एक समय रहल जब भारत के विश्वगुरु के उपाधि से संबोधित करल गेल रहे। दुनिया भर के विद्वान अध्यात्मवाद के शिक्षा लेवे खातिर यहाँ आवत रहें। आज गुड़ी से गुड़ी भारतीय भी जब ले ओकरे लगे विदेश के डिग्री ना रहे तब तक ओका सम्मान ना होला। हमन के अपन समृद्ध संस्कृत के अगर गहराई से देखी तई दुनिया के सबसे उन्नत संस्कृति एवं प्राचीन संस्कृत रहल। लेकिन आज हमन के संस्कार परिवर्तन हो गई बा। माता पिता, बाबूजी, माई शब्दन में जवन माधुर्य बा वो मम्मी पापा शब्द में नहीं खे। हमन के रहन सहन के तरीका भी बदल लगली। कार्य संस्कृति बातचीत में अंग्रेजियत हावी हो गई। हमन के पश्चिमी सभ्यता के अनुयायी बने लगली। विदेशी ठाट बाट आराम तलबी पसंद आवे लागल, जबकि अपने संस्कृत में मेहनत, ईमानदारी, जुझारूपन, कठिन परिस्थिति में निर्वहन

0: दूरदर्शिता रहल। आज मनई स्वार्थपरता सीख के आत्मकेंद्रित हो गई। आज कुछ परिवार में माता पिता सिर्फ अपने लइकन के बीच में रह के एकाकी होत हमें, तब उनके बाल बच्चे भी यही व्यवहार सीख के अपने व्यवहार में उतारत हमें। कहल जाला बच्चे बड़े लोगन से ही स्वतः सीखेल, जैसन उ देखल हमें वैसे ही करत हमें। आज माता पिता बड़े बुजुर्गन के सम्मान ओ ढंग तौर तरीका से ना ही हो पावत बा जवन पहले रहे, काहे से कि पहले कर्तव्य बोध के भाव रहे। प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में गुरुकुल की व्यवस्था रहे। गुरुकुल के अनुशासित जीवन में छोट बड़ अमीर गरीब सबके खातिर समान नियम रहे। छात्र अपने आवश्यकता के सब कार्य स्वयं करत रहें, यहाँ तक कि भिक्षा ग्रहण करके गुरु के समर्पित कई के भोजन के व्यवस्था विद्यार्थी जीवन से ही करके व्यवहार में रहें। समाज के लोग भी ससने इन लोगन के सहायता करत रहें, काहे से कि हर घर के लइका या विद्यार्थी कहीं ना कहीं कौनो गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण करत रहें। सांस्कृतिक विरासत में भाषा पर भी ध्यान देवे के पड़ी। आज अधिकांश उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी बन गई बा। आपन मातृभाषा जवन बचपन से ही आदमी ग्रहण करत आयल बा, ओसे पृथक एक दूसर भाषा में अध्ययन कैल असुविधाजनक हो जाले। वर्तमान में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में परिवर्तन आ गई बा। पहले शिक्षक समाज में सम्माननीय पद पर आरूढ़ रहत रहलें, उनके प्रति सम्मान में राजसत्ता भी रहत रहल, लेकिन आज शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के स्वरूप प्रकृति बदल गई बा। गुरुजनों के सम्मान के भावना लुप्त हो रहल बा। आज भारतीय परिवार जवन विश्व में संयुक्त परिवार खातिर जानल जात रहे, आज रोजी रोटी के चक्कर में परिवार से दूर होते ही एकाकी परिवार बना लेते रहे। पृथक परिवार के गठन आत्मकेंद्रित स्वार्थपरता सहनशीलता के अभाव संयुक्त परिवार के तोड़ रहल बा। संयुक्त परिवार में जहाँ एकता अखंडता पर बल मिलत रहे, छोट लोग बड़े से प्यार दुलार स्नेह पावत रहें, संरक्षण एवं आर्थिक मदद रहें सुरक्षा रहल, वहीं एकाकी परिवार तनाव में रही के प्रगति में स्वयं बाधक बनत बा। अब मनई स्वयं के ही सर्वोपरिमान ले ले बा। अपने प्राचीन संस्कृति में स्त्रियन के बहुत सम्मान रहे, संस्कार यज्ञ राजकाज में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेत रहनी, लेकिन आज स्थिति बदल गई बा। आज महिलाओं पर होए वाला अत्याचार, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, स्त्री के प्रति सम्मान के विचार में परिवर्तन हवे। जबकि अपने संस्कृत में कहल गई बा कि यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, एकर वास्तविक अर्थ समझे के चाहें। भारतीय संस्कृत में मूल तत्व के समझे के चाहें। इमय प्राणी मात्र के खातिर दया भाव नइखे। पेड़ पौधा नदी कुआं झील फसल धरती सर्वधर्म सम्मान के प्रति आदर भाव बा। हमन के संस्कृत में वसुधैव कुटुम्बकम के भाव बा। हमन के अपने प्राचीन भारतीय संस्कृत पर गर्व करे के चाहें, अपने संस्कार पर चिंतन करे के चाहें, अपन गौरवशाली परंपरा के प्रति सम्मान और आदर के पुनः स्थापित करे के चाहें।
1: अभी आप सुन रहे थे भूतपुरी वार्ता, भारतीय संस्कृति का विशेषता है। वार्ताकार थे राम किशोर यादव। ये था आज का भोजपुरी कार्यक्रम देश हमार। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार,
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
2: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए

0: हमारा नंबर 0551220538 0551 हमारा एसटीडी नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220538 अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत। हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के लिए
1: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। स्तबक प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं गुजराती लोकगीत।

प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे गुजराती लोकगीत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता भारतीय परंपराओं के संवाहक विद्यानिवास मिश्र। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अखिल मिश्र। फिल्म संगीत का वक्त होगा रात्रि 7:31 और रात्रि 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम रात्रि 10:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन, राग होगा अंतरध्वनि। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के फनकार होंगे हरिहरन। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। मीडियम वेव 330.03 यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जो हमारे लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
4: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
3: कहाँ से पता चलेगा?
4: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
5: आज ही सर्च करूंगा।
4: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा गबन प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित, स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का किया लोकार्पण, कहा विरासत को संरक्षित कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, इस पहल से पीलीभीत में खुलेंगे विकास के नए द्वार।

0: नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज ने बताया कि बैठक में चंपत राय की जगह ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव का कार्यभार कृष्ण मोहन को सौंपा गया है।
1: इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्याग पत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था ऐसी स्थिति में, और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे।
0: श्री गिरी ने बताया कि न्यास की अगली बैठक 22 तारीख को होगी और उम्मीद है कि तब तक SIT की अंतिम रिपोर्ट भी मिल जाएगी। बैठक में उस रिपोर्ट पर चर्चा के साथ ही अतिरिक्त ट्रस्टी नियुक्त करने पर फैसला होगा। इससे पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पत्र के माध्यम से कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितता की घटना से वह बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि इस मामले का किसी भी तरह से राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले की CBI से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही और सरकारी वकील शैलेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी याचिका उच्चतम न्यायालय में पहले ही लंबित है, इसलिए इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। सुनवाई के बाद जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला ने याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एक प्रेसवार्ता में IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट के गठन के साथ ही स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
2: आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में बहुत आगे है। 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इनक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। और आज स्टार्टअप मिशन गवर्नमेंट के अंडर में एक सोसाइटी पंजीकरण के द्वारा इसको बनाया जाएगा। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल UPLC देखती थी। इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें CEO होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा।
0: वहीं श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने श्रम विभाग की ओर से गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल और वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को सहमति दी है। उन्होंने बताया कि इस ESIC मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पर श्रमिकों के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा।
3: गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है। मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो MBBS की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी। 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।
0: संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को स्वीकृति दी गई। खेल मंत्री गिरीश यादव ने बताया कि बैठक में ओलंपिक पैरालंपिक एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट ने नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने और अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज के कालीघाट पर स्थित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन महान विभूतियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है, आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा लेगी। उन्होंने कहा कि महापुरुषों को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि विकास करने के लिए विरासत का सम्मान करना जरूरी है।
4: महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके हम सब आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं और इसी प्रेरणा के स्रोत ये महापुरुष हम सब के लिए हैं। और वही तो है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है कि अगर विकास करना है हमें विरासत का सम्मान करना होगा। और विरासत का सम्मान कैसे करना है ये प्रयागराज से ज्यादा कोई नहीं जानता। प्रयागराज ने तो करके दिखाया है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअली टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह ट्रेन उत्तर भारत से दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रेलवे ने काफी प्रगति की है। रेल ट्रैक दोहरीकरण, विद्युतीकरण और स्टेशनों को स्वच्छ व सुंदर बनाने के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि नई ट्रेन के चलने से पूर्णागिरी देवी मंदिर, नेपाल रीठा साहिब आदि कैलाश और नानकमत्ता साहिब तक यात्रियों की पहुंच सुगम होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से पीलीभीत के विकास को गति मिलेगी।
5: जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था पीलीभीत की धरती पे और उन्होंने कहा था कि पीलीभीत का कायाकल्प करके दे देंगे और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें यहाँ चलने का काम रेल मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि ये ट्रेन से जुड़ाव उद्योग बनाता है। भारत की जनता इस पीलीभीत की धरती पे आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आमदनी के जरिए मिलेंगे।
0: इस दौरान श्री प्रसाद ने शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी जनपदों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने जबकि पश्चिमी जनपदों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा गबन प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित। स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का किया लोकार्पण। कहा विरासत को संरक्षित कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा इस पहल से पीलीभीत में खुलेंगे विकास के नए द्वार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
6: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
7: ओह लवली, वेल डन।
6: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
7: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
8: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
7: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
8: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
7: आप कौन?
9: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
11: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
10: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
12: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
10: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
12: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
10: गाने के बोल,
12: गीतकार
10: और संगीतकार
12: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
10: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
12: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
10: गाते
12: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
10: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
13: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
10: फिल्म संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म बुड्ढा मिल गया से।
14: रोता आए हंसता
10: लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में।

गोरे तन का तेरा दूल्हा होगा चौड़ा चकला, उसके सर पे चांद दिखेगा यानी होगा टकला। बच्चा जैसा बोला होगा तेरा दिलबर जानी, थोड़ी उसकी नाक बहेगी थोड़ा मुख से पानी। एक निकम्मा नाकारा लिखा है भाग में तेरे, एक निकम्मा नाकारा लिखा है भाग में तेरे,

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं मधुर सुल्तानपुरी के लिखे गीत। अभी आपने सुना फिल्म बुढ़ा मिल गया का ये गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म दो फूल का ये गीत आशा भोसले और महमूद की आवाज में। आरडी बर्मन की बनाई तर्ज, शब्द रचना मजरा सुल्तानपुरी के।

0: अगर जुलेखा काहरी तू, अरे मेरी प्यारी काली कोयल कहां छुप गई तू, अरे जुलेखा।
1: या अल्लाह वो आ गया, देखो देखो मेरे फेफड़े का टुकड़ा आ गया।

पार्टी मिले। पहचाना? मेरा नाम है हलीमा, प्यार से लोग मुझे कहते हल्लो। तुम्हारा नाम क्या है? बाके हल्लो, बाके हलवेले।

बैठा ना, मेरा नाम है हलीमा, प्यार से लोग मुझे कहते हैं हलू। जब मैं पैदा हुई पूछो ना बात, ना दिन था ना रात, घड़ी के दो कांटे हुए तभी एक ही कांटा नजर आ, ना इधर ना उधर, किसे थी खबर बड़ी होकर मैं क्या बनूं। फिर जब मैं बड़ी हुई मेरी चाल बदलने लगी, हाय जब मेरी कंबल लटकने लगी, ऐसे ऐसे मैं गली गली भटकने लगी। फिर एक दिन वो मिला, क्या नाम था, माटी मिला।

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अभी अपने फिल्म तीसरी मंजिल का यह गीत सुना। संगीत था आरडी बर्मन का, गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता भारतीय परंपराओं के संवाहक विद्यानिवास मिश्र। वार्ताकार हैं डॉक्टर अखिल मिश्र।
1: भारतीय संस्कृति परंपरा मानव चित्त की खेती है। मानव चित्त अपने वातावरण, पर्यावरण, लोक मान्यताओं से निर्मित होता है। इन्हीं लोक मान्यताओं के गर्भ से संस्कृति या परंपराओं का जन्म हुआ है। विद्यानिवास जी का मानना है कि लोक शास्त्र से ऊपर है और लोक मन भी शास्त्र का अंग होकर ही प्रतिष्ठित होता है, किंतु वे शास्त्र को और जांचने परखने की बात करते हैं। उनका वैष्णव चित्त शास्त्र का उपासक है, जिससे परमुखापेक्षी ना हो सके, पर वे जड़ शास्त्र के उपासक नहीं रहे। बात बात में वे विदेशियों का मुंह जोहना पड़े, अपना विकास अपने देश में खरादे हुए मूल्यों से, पैमानों से नहीं हो सकेगा तो क्या पश्चिम से गढ़े गए पोथियों से होगा, जहाँ की संस्कृति ही भिन्न है, भाषा भी हमसे भिन्न है। किंतु विद्यानिवास जी ने परंपरा की मार को भी निकट से देखा था। उसकी ठेस को जब वे महसूस करते हैं तो उनका मन आधुनिक हो जाता है, परंतु जब वे आधुनिकता की विडंबनाओं को देखते हैं तो उनका मन भारतीय परंपरा की ओर झुक जाता है। यही वस्तुतः विद्यानिवास जी का समग्र परंपरा एवं आधुनिकता बोध है। विद्यानिवास जी के निबंधों में लोक एक व्यापक परिवेश में प्रयुक्त हुआ है। उन्होंने भारतीय लोक गीतों में निहित भाव संपदा को भलीभांति पहचाना है। इस कारण उनके लेखन में सरसता, मधुरता और आत्मीयता है। वे परंपरा को जितना समझते थे उतना परिवर्तन को भी। लोक संस्कृति और शास्त्र पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विद्यानिवास जी कहते हैं, लोक में रचा बसा संस्कार लोक संस्कृति है। जो विविधता को समेटे है वह जीवन रस का स्रोत रही है। हिंदू शास्त्र बड़े बीहण हैं, उनको समझने के लिए उनको पूरा देखना पड़ता है। उनके साथ ही निश्चित रूप से लोकाचार को भी देखना पड़ता है। लोकाचार भी शास्त्र बनकर ही प्रतिष्ठित होता है। विद्यानिवास जी भारतीय लोक जीवन के सनातन प्रवाह का अवगाहन करते हुए कहते हैं कि मैं अगर अजनबी शहरों और परिवेशों में आत्मीयता की पुकार लगा सकूं, तो इसलिए कि मेरा एक गांव, घर ऐसा है जो बराबर मेरे साथ है। इस प्रकार लोक जीवन के प्रति साझेदारी की भावना ही भारतीय परंपरा है। उनके गवीं घर का तात्पर्य सिर्फ स्थल विशेष नहीं, बल्कि रचनाकार की अपनी तई जीवित संस्कृति और लोक संस्कृति है। लोक जीवन से जुड़े लोक गीतों, लोक उत्सव की अंतर्निहित छटा उनके निबंधों में प्रवहमान है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकुआ, सीता के सिनुरुआ, त राम घर लौटी हैं। राम के घर लौटने की आशा कामना ही भारतीय लोकमन का विश्वास है। भारतीय परंपरा की जब भी बात होगी तो उसके वर्तमान को रखते हुए होगी। वर्तमान में वह कितने समाचरित रूप में है, कितना उसमें वेद समाया हुआ है, कितना उसमें बुद्ध की वाणी है, कितना उसमें किनकी वाणी है, कितने असंख्य साधना करने वाले साधुओं, संतों और फकीरों की वाणी है, गुरु नानक जैसे महान साधकों की वाणी है, जो कहते हैं गगन के थाल में चंद्र सूर्य दीपक जरें। कितनी बड़ी आरती की चर्चा है उसमें, पूरा आकाश थाली है, आरती की थाली है और चंद्रमा एवं सूर्य उसमें दीपक के रूप में रखे हुए हैं, जल रहे हैं। हवा धूप बनकर सुगंध फैला रही है, सारी नक्षत्र मालिकाएँ मोती बनकर उस थाली में गिर रही हैं। इस विराटता की कल्पना इसके भीतर है, इसके साथ ही साथ लघुत्तम की कल्पना भी इसके भीतर है, लघुत्तम की चिंता भी इसके भीतर है, छोटे से छोटे तृण की भी चिंता इसके भीतर है, जो बार बार कुचली जाती है, बार बार पसरती है और ज़्यादा पसरती है। इसी तरह से हे मनुष्य, तुम पसरो, दुर्निवार जीवसा हो तुम्हारे

भीतर जिस तरह से धूम में होती है। भारतीय परंपरा के भीतर एक तरफ कालिदास का मजा हुआ काव्य है तो दूसरी तरफ कबीर की अनपढ़ सच्चाई है। इसके भीतर रैदास का आमंत्रण है कि मैं अपनी पानी बन करके प्रभु तुम्हारे चंदन की सुरभि दूर दूर तक पहुंचाऊंगा। इसी भारतीय परंपरा को विद्यानिवास जी अपने निबंधों में व्यक्त करते हैं। मिश्र जी के निबंधों में प्रायः घूम फिर कर परम्परा और संस्कृत की गवेषणा आ ही जाती है। उनके साहित्य सृजन का मूल आधार एवं केंद्रीय संवेदना है आंगन का पंछी, नदी नारी और संस्कृति, हिमालय और अस्थि की पुकार, हिमालय, कटहल और होरहा, कदम की फूली डाल, कल्पवास उनके निबंधों की विषय वस्तु और शीर्षक बनते हैं। इनमें ऐसी आर्द्रता, शोभा, क्षोभ और उदासी का घोल पाठक को सरोबार करती है कि ये निबंध काव्यात्मक ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। परंपरा बंधन नहीं है, भारतीय परंपरा तथा भारतीयता की पहचान जैसी कृतियां विद्यानिवास जी की वैचारिकता के आधार हैं। उनका मानना है कि श्लोक में मनुष्यों का समूह ही नहीं, सृष्टि के चर अचर सभी सम्मिलित हैं। पशु पक्षी, वृक्ष, नदी, पर्वत सब लोक हैं और सबके साथ साझेदारी की भावना लोक दृष्टि है। विद्यानिवास जी मध्यकालीन संतों एवं कवियों को याद करते हैं जिन्होंने पुराने जीवन मूल्यों की गठरी को फेंक कर विघटित स्वर भेद से खंड खंड हुए समाज को जोड़कर अखंड बनाने की चुनौती दी। पंडित जी आधुनिकता एवं आस्था के बीच अंतर विरोध नहीं पाते, बल्कि हमारे समाज में अपने को शिक्षित और आधुनिक समझने वाली पश्चिमोन्मुखी लोगों द्वारा भारतीय जन को पिछड़ा हुआ या रूढ़िवादी, मूर्ख, गंवार समझे जाने की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं और दोनों के बीच की संवेदनात्मक दूरी को समाप्त करने की आकांक्षा में पर्याकुल होते हैं, क्योंकि आम आदमी उनके लिए नारा नहीं है, मुखौटा नहीं है, वह उनके भीतर बैठ कर लिखाता है। इसलिए वे बुद्धिवाद से घबराते हैं, समझदारी से ज़्यादा महत्व साझेदारी को देते हैं। सपने कहाँ गए निबंध संग्रह में लेखक ने आज़ादी के बाद के 50 वर्षों का लेखा जोखा संग्रह किया है। विद्यानिवास जी के निबंध परंपरा बंधन नहीं के प्रथम प्रकाशित प्रारूप को पढ़ने के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब गोरखपुर आए थे तो वहाँ एक विशाल जनसभा में उन्होंने कहा था कि मैं इस धरती को प्रणाम करने आया हूँ जिसने विद्यानिवास मिश्र जैसा विचारक दिया है। मैं रास्ते में उनका निबंध पढ़ते आया हूँ और संतोष का अनुभव हुआ है। हिंदुस्तानी दृष्टि से हिंदुस्तान को समझने की एक नई शुरुआत हुई है, मैं इसको बहुत शुभ लक्षण मानता हूँ। विद्यानिवास जी की सृजनात्मक संवेदना की जड़ें संस्कृति, आंचलिक संस्कृति में है। लोक संस्कृति उनके लेखन का अभिन्न अंग है। भारतीय वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक खूब रमा है। वे रेती में अपनी डोंगी नहीं चलाना चाहते, न बधे रुधे तालाबों में छपकुड़ी खेलना चाहते हैं। लोक जीवन अनुभूत की उन्हें गहरी पहचान है। विद्यानिवास जी ने अपने संस्कृति विमर्श में भारतीय संस्कृति का मूल आधार तितिक्षा स्वीकार किया है, जिसकी सही अर्थ में मूर्त व्यंजना दुर्वा ही है। तितिक्षा के कारण ही उस संस्कृत की एक शाखा उच्छिन्न होते ही दूसरी शाखा निकल आती है। उस पर जितने ही मार्मिक आघात हुए हैं उनसे ही रातों रात सहस्र उमंगों के साथ वह पनपी है। विद्यानिवास जी का मानना है कि परंपरा के रस की गहराई, अवधारणा और विस्तार के बोध के बिना आधुनिक होने का अर्थ परिवेश से उखड़ना और बौना होना है, जो आज के अधिकांश समकालीन लेखन में एक तड़प, बेचैनी, व्याकुलता, अजनबीपन का विष अनजाने घोल रहा है। पढ़कर तनावग्रस्त हो जाना, विषादग्रस्त हो जाना पड़ता है। शब्द अर्थ खोते जा रहे हैं, यह सब सांस्कृतिक संकट है। इसका निवारण भारतीय संस्कृति एवं उसके विपुल वांग्मय में है। विद्यानिवास जी बार बार भारतीय वैष्णव परंपरा के राधा की वरलता को अपने पाठकों को देने की चेष्टा करते हैं। राधा भाव सभी धर्मों, मतों, मतांतरों, तत्व निरूपणों, ज्ञान विज्ञान से बहुत ऊपर की चीज है, जहां मिट जाना ही पाना है। आज के जीवन में जो सब कुछ पा लेने की दौड़ व्यक्ति से लेकर राष्ट्र और राष्ट्र से आगे पूरी मानवता में मची हुई है, उसका परिणाम उनका साहित्य और वे जानते थे चेतना की वीणा बजे और चर अचर समग्र मानवता उसकी दिव्य मधुरता में जिए, ऐसी कामना उनके साहित्य में है। विद्यानिवास जी ने भारतीय परंपरा का एक विशद अध्ययन अपने निबंधों में प्रस्तुत किया है। उनका मन गांव का मन है, जिस गांव में संपूर्ण भारत

0: बसता है। पंडित जी अपने निबंध गांव के मन में इस बात को रेखांकित करते हैं कि संपूर्ण भारतीय मन गांव के मन से निर्मित हुआ है। भारतीय अपनी पहचान, अपनी परंपरा, अपने जीवन मूल्यों के साथ जहां भी हैं पूरी ठसक के साथ मौजूद हैं। लोक उत्सवों को पंडित जी ने अपने निबंधों में खूब जगह दी है। फागुन दुई रे दिना निबंध में विद्यानिवास जी ने बताया है कि फागुन में भारतीय मन हरा भरा हो जाता है, मन के सारे कचोट बाहर आ जाते हैं। वे मानते हैं कि भारतीय उत्सव उल्लास हमारे मन को अकुंठ बनाते हैं। कुंठा जो आधुनिक मानव की नियति है, भारतीय उत्सव उससे उसे मुक्त करते हैं। विद्यानिवास जी ने विस्थापन की समस्या को अपने निबंधों का विषय क्षेत्र बनाया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में उन्होंने इस विषय को विस्तार दिया है। विद्यानिवास जी ने भारतीय परंपरा के गहरे अन्वेषक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने अपने को भारतीय संस्कृति के लिए द्राक्षा की तरह निचोड़ दिया है। महाभारत के काव्यार्थ, नदी नारी एवं संस्कृत जैसे निबंध में उन्होंने भारतीय परंपरा का गहरा अन्वेषण किया है, उसे एक नई पहचान दी है। उनके मूल्यवादी तत्वों को बाहर लेकर आए हैं जिसे युगों युगों तक भारतीय मन पढ़कर प्रफुल्लित होता रहेगा। उनकी रचनाओं से गुजरना भारतीय परंपरा एवं संस्कृति से गुजरना है। वे एक साथ लोक एवं शास्त्र दोनों का अवगाहन कराते हैं, पाठकों को उस रस में भिगोकर आनंदित करते हैं, सत्य चित्त आनंद में ले जाते हैं। पंडित जी को याद करना, अपनी पूरी परंपरा को याद करना, अपनी पूरी नियति को याद करना है।
1: भारतीय परंपराओं के संवाहक विद्यानिवास मिश्र, वार्ताकार थे डॉक्टर अखिल मिश्र। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम में ये वार्ता। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
4: जी हाँ, भंवरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
5: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
4: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
5: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
4: गाने के बोल,
5: गीतकार
4: और संगीतकार,
5: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
4: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
5: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
4: गाते
5: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
4: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 900 किलो हर्ट्ज पर तथा FM 14.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386।

0: 6। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ।
1: कॉल करना
0: भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
3: प्रोग्राम का आगाज करते हैं मुशीर झंझनवी के इस कलाम से, जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए। मौसिकी और आवाज हरिहरन की।

आइए सुनते हैं। लफ्जों की तरह मुझसे किताबों में मिलाकर, दुनिया का तुझे डर है तो ख्वाबों में मिलाकर। इसरार अंसारी का ये कलाम हरिहरन की आवाज़, मौसिकी हरिहरन की।

0: सुगम संगीत में वक्त हो चला है एक छोटी सी अंतराल का।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B फार्मा M फार्मा और D फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

ये तजुर्बा भी करा ये भी गम उठाऊं मैं, कि खुद को याद रखूं उसको भूल जाऊं मैं। मजहर का ये कलाम आइए सुनते हैं हरिहरन की आवाज में।

प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं कैफी भोपाली का ये कलाम, दाग दुनिया ने दिए जख्म जमाने से मिले, हमको ये तोहफे तुमको दोस्त बनाने से मिले।

दाग दुनिया से मिले, जख्म जमाने से मिले, हमको ये तोहफे तुमको दोस्त बनाने से मिले। कैफ भोपाली के इस कलाम के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल

0: विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का

0: ईस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
3: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
4: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his 3-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary. says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
7: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the Prime Minister's visit and voiced confidence that it would further strengthen bilateral ties and create new opportunities for trade and investment. Shrundipan Dasgupta, Jakarta, Indonesia.
6: Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
8: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक महान देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं
6: The Prime Minister said Dr. Mukherjee fiercely opposed the talk of two constitutions, two prime ministers and two flags in the country. He said Shyama Prasad Mukherjee understood very well that the essence of nation building is in the building of institutions. He said Dr. Mukherjee laid the foundation for such national institutions which became India's economic strength for decades to come. Union Home Minister Amit Shah participated in the 125th birth anniversary program of Shyama Prasad Mukherjee in Kolkata. We have more from a correspondent.
9: The whole nation is celebrating the 125th birth anniversary of Shyama Prasad Mukherjee. On this occasion, Union Home Minister Amit Shah joined a chain of events in Kolkata. Home Minister Amit Shah visited Shyama Prasad Mukherjee's ancestral home in Kolkata and paid his tribute. Before this, he participated in the groundbreaking ceremony for erecting 125-foot statue of Shyama Prasad Mukherjee. Earlier in the morning, West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari paid floral tributes at the statue of Shyama Prasad Mukherjee in an event at Red Road in Kolkata. Kollan Laha for Akashvani News, Kolkata.
6: Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of the Dr. Shyama Prasad Mukherjee Smart Industrial Park in Sadgari, Bhopal. More than 200 leading industrialists and investors from across the country attended the event. The Sriram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after the name surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed Interim General Secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which eight people have been arrested. The trust has also decided to appoint a chief executive officer and has formed a 3-member committee to recommend candidates. Addressing the media, trust treasurer Govind Dev Giri said the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. He also asserted that all donated ornaments and valuables are safe, properly accounted for, and that details of donated items are available with the trust. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Heavy rains continue to batter Mumbai and coastal Maharashtra, disrupting normal life and triggering landslides, flooding and widespread damage. With the weather expected to remain severe over the next 2 days, the Maharashtra government has put all disaster response agencies on high alert, while the IMD has issued red alerts for several districts. We have a report.
10: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis reviewed the situation with SDRF. He said severe weather conditions are expected to persist till the night of July 8th and instructed various authorities to maintain maximum vigilance. He also directed authorities to immediately clear landslides reported on major highways which affected movement of traffic along Mumbai-Pune Expressway and Mumbai-Goa Highway. At least 2 people were killed after a landslide buried a house in Patan village of Mawal Taluka today. In Nasik district, authorities have sounded maximum alert following forecasts of cloudbursts like rainfall. Schools and colleges in sensitive areas of Nasik district will remain closed tomorrow. CM Fadnavis asked citizens to venture outdoors only if absolutely necessary. Devapriya Bhattacharji, Akashvani News, Mumbai.
6: In Jharkhand also, continuous rainfall has disrupted normal life across several districts. Met Department has issued a yellow alert for heavy rain, strong winds and lightning over the next 2 days. We have a report.
11: The India Meteorological Department has issued a yellow alert for the next 2 days, forecasting heavy rainfall, thunderstorms, lightning and strong winds with speeds of 40 to 50 kilometers per hour in several parts of the state. During the last 24 hours, the highest rainfall of 79.8 millimeters was recorded at Nimdi in Saraikela Kharsama district, while Ranchi received 37 millimeters of rainfall. Several other districts also recorded significant precipitation. The Meteorological Department has advised people to avoid unnecessary travel, stay away from open areas during thunderstorms, and remain in safe locations until weather conditions improve. Mahesh Rahman, Akashwani News, Ranchi.
6: Widespread heavy rainfall has lashed Gujarat over the past 24 hours, disrupting normal life in the Saurashtra and South Gujarat regions. Rajula and Dhari tehsils in Amreli district recorded nearly 10 inches of rainfall during the past 24 hours. Heavy rains have prompted authorities to place 6 major dams on high alert. The Sardar Sarovar Narmada Dam stands at 64.57% capacity. Meanwhile, the IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Saurashtra, Kutch, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka for tomorrow. The Met Department has forecast heavy to very heavy rainfall over North Indian states, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Bihar, interior Karnataka, Madhya Pradesh, Vidarbh, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The Central Bureau of Investigation, CBI, has conducted searches at 26 locations across 11 states and union territories in connection with 4 criminal cases pertaining to misappropriation of funds in Border Road Organization. Several incriminating documents and digital evidence have been recovered during the searches and investigation is continuing. A total of 10 officers of the rank of Lieutenant Colonel, Major and engineers, along with certain private persons, have been named in the FIRs. The agency said that these cases are related to irregularities in deployment of casual labourers and payments released in the name of fake casual labourers in the project Vijayak and Yojak in Ladakh. 4 FIRs were registered in this connection based on criminal complaints lodged by the Ministry of Defence. Railways Minister Ashwini Vaishnav has said that more than 300 special trains will be operated for the Rath Yatra of Lord Jagannath this year. These are in addition to the regular more than 800 trains. Talking to reporters in New Delhi today, Mr. Vaishnav said he will review the railway preparations for the upcoming Rath Yatra to ensure smooth operations. Mr. Vaishnav today virtually inaugurated a new train service between Tanakpur in Uttarakhand and Hazur Sahib at Nanded in Maharashtra, along with extension of Tanakpur Pilibhit rail service up to Shahjahanpur.
2: We will be operating 300 plus special trains during the Rath Yatra of Mahaprabhu Jagannath Ji, and during Onam festival we'll be running about more than 100 special trains. This is a big effort from railways, effort from the central government, effort from Prime Minister Narendra Modi Ji to make sure that our city

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, UPI, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड

0: जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे, इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो की फोन नंबर 2331-0481-2371-7116-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमारम जी, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
2: सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़िक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फ़ोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फ़ोन पे और SMS से और WhatsApp द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
1: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इन्फॉर्मेशन वैसे ही नहीं मांगती है
0: जी।
1: और ऐसा है, इसका एक थंब रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसके उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ, एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
0: ठीक है,
1: क्योंकि ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
0: जी,
1: रिटर्न कॉल नहीं होती,
0: सबसे बड़ी बात।
1: हाँ
0: जी, बिल्कुल।
1: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको एक मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
0: जी।
1: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं वो।

0: कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है तो। उसके बाद अगर फ़ोन आप आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए, अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं। रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
1: पकड़ा जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
2: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
1: जी। रवि
2: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: जी सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार रवि जी नमस्कार।
2: सर मैं जानना चाहता हूँ एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि AI भी है फ्रॉड भी है, तो वो डिजिटल साक्षर कैसे प्राप्त करे और इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
0: देखिए डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज़्यादा उसमें काम है। इनकी एक नाइलेट है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है नाइलेट NILIET नाइलेट है, और उस पे उन्होंने काफ़ी कोर्सेस उस पे डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
1: जी।
0: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है। आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए और उनमें काफ़ी मटेरियल है, उस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी शॉर्ट मॉड्यूल्स हैं, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिस पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोमरम जी आपसे जानना चाहेंगे UPI आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: UPI दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 or even 1.2 in every 2 मतलब 50-70% ट्रांजेक्शन पूरी दुनिया का UPI के माध्यम से होता है।
1: बहुत बड़ी बात।
3: और भारत न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
1: जी।
3: और एक समय में जो यूरोपियन या US डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहाँ तक जा करके उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह की जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि देश में जो हमारे देश में यह भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो MSME और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए UPI एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे NBFC का काफ़ी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक कि वो पहले नहीं पहुँच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स UPI के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश है।
1: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
4: जी। नमस्कार सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक OTP का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहा है बहुत सारे केस में, उसके लिए हमें कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं क्या, कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज ये मैं एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं जी।
0: आपका सवाल

0: पर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे
1: जी? नमस्कार।
2: नमस्कार,
0: नमस्कार जी। नमस्कार
1: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
2: नमस्कार जी।
3: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
1: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
2: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
0: जी,
2: स्टूडेंट्स
1: जी।
2: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है। अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई 6ठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई 7वीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो 7वीं पढ़ रहा है और उसे 6ठी में डाउट है तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के बड़े MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के मेडिसिन के IIMs के मैनेजमेंट के ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर YouTube पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देख कर ले सकते हैं।
0: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
2: दो विषयों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो स्तर लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की PLI स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहाँ तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में है, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य AI टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीज़न के लिए अलग लागू किया है, जो सीनियर सिटीज़न का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलोअप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीज़न के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
0: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
4: धन्यवाद। मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
4: सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर
0: जी, बताइए।
4: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो? और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में टर्शरी क्लास के बच्चों से स्टार्ट होके देखा जाता है स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है। धन्यवाद।
3: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फ़ोन की बात है। देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फ़ोन जो होता है बहुत सिंपल फ़ोन होता है और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या OTP आता है वो सब SMS के द्वारा आते हैं, WhatsApp और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो OTP आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका वही इफ़ेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या फीचर फ़ोन से किया उसका इफ़ेक्ट सेम है। जहाँ तक OTP और मैसेजेस का सवाल है उसका दोनों का इफ़ेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें फ़ीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फ़ोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है, और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पज़ के लिए अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका OTP आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फ़ीचर्स फ़ोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फ़ीचर्स फ़ोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फ़ीचर्स फ़ोन नॉर्मल पर्पज़ के लिए काफ़ी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
0: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गाँव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या बातें हो सकती हैं?
3: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
0: जी।
3: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जितनी जो ज़रूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करें
0: जी।
3: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है।
0: बिल्कुल नंदकुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
2: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं। लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको OTP दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज़ इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ और कैसे दूँ। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन, दूसरी साथी वहाँ काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें। क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
0: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? जो 1930 जो काल है इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए
2: जी। हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1900

0: इसमें दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए, या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए, या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है, जहाँ पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहाँ पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता। तो इस तरह के केसेस में वह उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहाँ, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको जीरो FIR करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो BNSS और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयाँ होती हैं। ये बात ज़रूर है कि चूँकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
2: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
2: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप OTP सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आपको ये, जब तक आप चीज़ कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
0: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है, और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
0: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। AI के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में, उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSGtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये पहला गीत फिल्म दोस्ती से, मोहम्मद रफी की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन।

फिल्म दोस्ती का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगम का ये गीत, मुकेश की आवाज़, शंकर जयकिशन की बनाई धुन और गीत शैलेंद्र के।

फिल्म मेरे सनम, इस फिल्म का ये गीत आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में, ओपी नैयर की संगीत और गीत मजरू सुल्तानपुरी।

फिल्म सरस्वती चंद्र का गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज़ में। कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन पर गीत इंदिवर के थे। आइए अब सुनते हैं फिल्म आराधना का यह गीत किशोर कुमार की आवाज़, एसडी बर्मन की बनाई धुन, गीत आनंद बख्शी के।

आइए सुनते हैं फिल्म कटी पतंग का ये गीत। किशोर कुमार की आवाज, राहुल देव बर्मन का संगीत, गीता।

फिल्म गाइड के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं राग अंतरध्वनि में पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे शिव कुमार शर्मा। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बज रहे हैं, आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली।

0: गई, उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Syama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
2: द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशंस ऑफ जनरल सेक्रेटरी